नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से यह है आकाशवाणी जलंधर केंद्र दा एफएम रेनबो चैनल है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 दे जेठ महीने दी 3 तारीख है। ते तारीख तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जून महीने दी 24 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे हैं। साड़ी अज दी सभा हुण शुरू हुंदी है। एफएम रेनबो अपने सारे स्रोतियां दा निघा स्वागत करता है।

नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से नाल नाल असी 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी अमृतसर के स्रोतियां का भी निघा स्वागत करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों नूं नागरिक देवोभव दी सोच नाल नागरिकां नूं शासन दे केंद्र विच रखण दी अपील कीती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो कारण संभावी माड़े प्रभावां नाल नजिठन विच किसानां दी मदद करन लई पहला तो तैयारियां कर रही है। जम्मू कश्मीर विच सुरक्षा बलों ने आउंदी श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 दियां तैयारियां दे हिस्से वजो जम्मू दे अमरनाथ बेस कैंप विखे एक व्यापक मॉक ड्रिल कीती। इस साल 22 जून 2026 तक 5 लाख तो वध श्रद्धालुओं ने जम्मू कश्मीर विच श्री माता वैष्णो देवी दी पवित्र गुफा दे दर्शन कीते ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब राज बिजली कारपोरेशन लिमिटेड विच नवे नियुक्त होए उम्मीदवारां नूं नियुक्ति पत्र सौंपे। पंजाब सरकार वल्लों दिव्यांगजना दी आर्थिक सुरक्षा लई चालू माली साल दौरान 125 करोड़ तो वध दी रकम जारी। पंजाब सरकार वल्लों आज मोहाली स्थित एमटी यूनिवर्सिटी विखे एनआरआई मिलनी 2026 प्रोग्राम करवाया जा रहा है। स्थानक सरकारां बारे मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने अचनचेत निरीक्षण पिछो सफाई विच उणताइयां करके मोगा दे नगर निगम कमिश्नर नूं कारण दसो नोटिस जारी कीता है। गुरदासपुर दे सठियाई हेड वर्कर्स नेड़े अपर बारी दुआब नहर विच बीते दिनी पए 100 फुट दे पाड़ नूं पूरा करन दा काम अज वी जारी। विभाग वल्लों काम छेती पूरा होण दी उम्मीद है।

गंधर्व महाविद्यालय बॉम्बे भेज दिता कि तुसी जाके उथे पढ़ो। उन्होंने शुरू हुई उन्हों की असली जड़ी तालीम गुरु सिक्ख्या। परंपरा दे विच संगीत उन्हों की नसा दे विच मैन लग गया। जीवन जीना भी सिक्ख्या। ओंकार जी ने सिर्फ गाना नहीं सिक्ख्या, उन्होंने संगीत नू जीना सिक्ख्या। तो सानू भी यही सिखाया कि संगीत जिहड़ा है ना, इस दे विच अपनी एक हीलिंग पावर हुंदी है। ग्वालियर घराने दे सीगे। हुण जे उन्हां दी गल करिए संगीत दी, तां पंडित ओंकार ठाकुर जी ग्वालियर घराने दे मशहूर गायक बन गए। पर दोस्तों, वो सिर्फ एक परंपरा नू फॉलो नहीं करते सी, उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्हां दा संगीत सिर्फ सुरां तक नहीं सीमित सी, उन्हां दी आवाज़ दे विच भावना सी, उन्हां दी आवाज़ दे विच एक मुस्कान सी, उन्हां दी मूवमेंट जिहड़ा सीगा एक अभिनय बनिया। जदों उन्होंने गाना शुरू किया तो लगता सी कि जिवें कोई कहानी साढ़े सामने साढ़े अखा दे दरमियान चल रही होवे। ते लोकां ने उन्हां नूं जिहड़ा जिंदगी दा हिस्सा है उसनूं जीना सिख लिया। लोकां नूं सिखाया कि जिंदगी दे विच चाहे किन्ने संघर्ष आ सकते ने, लेकिन साढ़े लई उस जिंदगी दे विच हर दम अगे वधदे रहना ही जिंदगी दा एक असल हिस्सा है।

जी दोस्तों, फिर सुन रहे हो अपने आज दोस्त राहिल नूं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच। ते कई साढ़े दोस्त सानूं सुन रहे ने न्यूज़ ऑन AIR ऐप राही, ते कई रेडियो राही भी सुन रहे ने। वैसे अजकल दे अद्धी तो वध छुट्टियां लोग मना रहे ने अपने फीफा वर्ल्ड कप देख के। क्यों, सही कह रही है ना? बिल्कुल जी, इसकी गल करिए तो जिते कल रात मैदान गोलियां की वर्खा हो रही थी, यानी कि ओहो गोल, उसकी गल कर रही हैं। तो जिते डिफेंस की कंध भी उन्नी ही मजबूत वेखन मिली है कि किसी ने गोल कर नहीं देना। कल दे मैच दे हाईलाइट्स विच जे असी गल करिए पुर्तगाल ते उज़्बेकिस्तान दे मैच दी, जिस दे विच पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान नूं 5-0 दे नाल हरा के अपने इरादे साफ कर दिते। पर सारी दुनिया दे विच जिहड़ियां नज़रां जिहड़ियां टिकियां होईयां सी ओह सीगी, बिल्कुल सही समझ पा रहे हो, जी जी जी, रोनाल्डो दी गल कर रही हां। रोनाल्डो ने इस मैच दे विच 2 गोल करके इतिहास रच दिता है। वह दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए ने जिन्होंने लगातार 6 वक-वक फीफा वर्ल्ड कप टूरनामेंट दे विच गोल किए ने। 2006 तो 2026 तक दी जर्नी दे विच इन्होंने लखां दिलां ते राज कर लिया है। हुण जिहड़ा दूजा मैच होया सी उस दी भी गल कर लैंदे हां, जिथे इंग्लैंड विरुद्ध घाना जड़ा वाल सीगा। उस दे मैच दे विच फुटबॉल फैनां दी गोल दी उम्मीद इन्नी ज़्यादा हाई फाई सीगी कि मैनूं हुण गोल वेखण नूं मिलेगा, कि सानूं हुण गोल वेखण नूं मिलेगा। पर दोनों टीमां ने डिफेंस, यानी डिफेंस वॉल इन्नी मजबूत की हुई सीगी कि 0-0 ते ड्रॉ दे नाल ही मैच जिहड़ा खत्म होया। कई मौके बने भी सी पर कई टीमां ने गोल करन दा कामयाबी जिहड़ी उस दे विच थोड़ी नाकामयाब हो गई। लेकिन क्योंकि जिहड़े इस दे नतीजे दे नाल ग्रुप एल ते होर भी दिलचस्प बन गया है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स दे विच मैच हो रहे ने। तो मैनूं लगता है कि डिफेंसिव इन्ना ज़्यादा खेड रहे सीगे कि जिस दे विच सानूं चलो गोल दे नहीं देखण नूं मिलेंगे, ड्रॉ हो गया मैच। पर अज दे मैचां दे विच भी यही चीज़ां कई देखण नूं मिलेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप दे इस ग्रुप दे विच हौली हौली अपना जिहड़ा रूप है ना सारी टीमां लै के आ रही ने। कुछ टीमां नॉकआउट राउंड दे विच हुण नेड़े आ चुके ने, जबकि कुछ टीमां दे लई हुण मैच इस तरह दे होणगे कि या ते करो या फिर मरो वाली सिचुएशन आने वाली है। अज दे मुकाबलियां दे विच कई वधिया टीमां अपनी पोजीशन नूं मजबूत भी करनगियां, ते देखदे हां अज दे मैच दे विच की जिहड़ा सानूं वेखण नूं मिलेगा, कि अज किन्ने क गोल होणगे या फिर अज वी डिफेंसिव बहुत ज़्यादा खेलिया जाएगा। अज दे मैच दे विच ते कई है जिस दे विच सब तो वड्डा मुकाबला जिहड़ा है एक्सपर्ट कह रहे ने कि स्कॉटलैंड वर्सिज ब्राज़ील दा वेखण नूं मिलेगा। ब्राज़ील जीत के जिहड़े ग्रुप है ना उस दे विच मजबूत है ही है, जबकि स्कॉटलैंड नूं वेख्या जाए तो उम्मीदां उत्थों भी बहुत ज़्यादा बनिया हुई हैं। इस दे विच इस बार जिहड़ियां टीमां खेड रही ने इस 2026 दे विच 48 टीमां ने, जिस दे विच अमेरिका हो गया, कैनेडा हो गया, मैक्सिको हो गया, अलग अलग देशों दे विच मेज़बानी भी की जा रही है। अज दे मैच दे विच कौन की करेगा ये भी ते वेखना बनता ही है। चौहन स्विट्जरलैंड वर्सिज कैनेडा की गल कर लिए तो जोड़ा कि कैनेडा का विच ही होएगा। हुण कैनेडा अपने घर के खेड रहा है तो क्राउड तो फुल स्पोर्ट

जी दोस्तों, दोस्तानी ट्यून के था कि ट्यून के था 102.7 एफएम रेनबो दिनाल नाल ही 103.6 मेगा हर्ट्स भी ते प्रोग्राम चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग जलंधर, 8:07 इस वेले हो चुके ने। ते जिंदगी जिंदगी ते की ही गल करिए, जिंदगी ने किन्ना किन्ना किन्ना सानू सिखाउंदी है। बिल्कुल, पहले रुवाउंदी भी है फिर हसाउंदी भी है। फिर अजकल जिस तरह लाइफ का माहौल साड़ा हो चुका है ना, लाइफ के इन्निया टेंशन है, इन्निया टेंशन है कि जो हिसाब लगाया जाए ना आप अपनी टेंशन का, तो मैं यही लगता है कि किसी दिन जड़िया ना जड़े इशू है वो तो जड़े रह जाएंगे दुनिया के विच, तो कि असी ना सॉल्व हो जाइए। सही कह रही हैं, क्योंकि लाइफ के आप इन्नी ज़्यादा टेंशन ले लें है ना, क्योंकि टेंशन जो सू हों दिमाग के होंगी है फिर दिल इन्ना क्यों घबरा है। दिल के दिमाग की आपस कि ज़्यादा जदोजहद चलती है, इस करके दिल के दिमाग में शांत रखना चाहिए। इस करके कई हूँ जड़िया कि दुनिया के कि चीज़ा चल रही ना साढ़े आले दुआले, फीफा चल रहा है, वूमेंस जोड़ा T20 कप चल रहा है, वो चीज़ भी हैं लाइफ के होर कि चीज़ा चल रही है। तो जोड़े साढ़े स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लाइफ के भी बड़ी हलचल चल रही हैं, वो भी दस दें क्यों चल रही हैं, क्योंकि अप्रैल तो लैके जोड़ा सा नवंबर तक के जोड़े महीने होंगे उन्होंने इन्ने ज़्यादा कंपीटेटिव एग्जाम निकलते हैं कि कही एक तो बाद एक तो बाद एक तो बाद एक, पर असी ना तैयारी तो की होंगी फिर भी कितने सैल्फ डाउट के रेंदे हूँ तैयारी कि करते ली है, हम की करिए अगे की करिए, कि मॉक टेस्ट वेखिए किसी अकैडमी के जाइए या की करिए, घर बैठे किमें तैयारी करिए, दिमाग के यही टेंशन रही है ना। फिर उस दे भी जी गवर्नमेंट ने ना काफ़ी चीज़ा जी स्टार्ट की हुई है, जिस दे विच स्वयं पोर्टल हो गया, उस दे विच तुसी जाके जड़े 2000 तो वध जड़े कोर्सेज़ है उन्हां दे विच अप्लाई कर सकते हो, जिस दे विच IITs हो गई, IIMs हो गई है, ते नाल ही जड़ा साथी प्लेटफॉर्म है उस दे विच तुसी तैयारी कर सकते हो अपने कंपीटेटिव एग्जाम दी, जिवें जी हो गया, नीट हो गया, उस दे नाल तुहानू AI बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। जे आपां गल करिए UPSC दी, UPSC दा तां एक बैच आ ही चुका है ना 2026 वाला, बिल्कुल कल ही तो हुई है इन प्यारी जी फोटो सारिया के नाल, तो अगले वाला जो अनाउंसमेंट होएगी उस तैयारियां पहला ही होनी चाहिए ने। इस करके उन्होंने ऑफिशियल वैबसाइट पर जाके तुसी जोड़े है पुराने जोड़े क्वेश्चन हैं उन्होंने सॉल्व कर सकते हो, या फिर PME विद्या जोड़ा है उस पर जाके तुसी अपनी जोड़ी है डॉक्यूमेंट्स चेक करके उस तो बाद अप्लाई कर सकते हो। नाल ही तुहानू कई जोड़े पुराने क्वेश्चन मिल जाएंगे, कई जोड़े एक्सपर्ट्स साडे टीचर्स हैं उन्होंने नाल जोड़ी ऑनलाइन थोड़ी टीचिंग क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इस नाल ही जे SSC यानी कि स्टाफ कमीशन की जड़ी चल रही है आजकल।

मैडलीन अल्ब्रट हो गई जिन्होंने जेड़ी दुनिया की पहली US सैक्रेटरी ऑफ स्टेट रही जिन्होंने ग्लोबल डिप्लोमेसी विच नवा अध्याय लिखे। एंगला जिन्होंने मजबूत लीडर होने का एक अनुमान दिता जिन्होंने यूरोप में स्थिरता संवाद को अगे बढ़ाया। खोजा भी यही कहें एक्सपर्ट भी यही कहते हैं जिथे महिलावां शांति का वरतारा दिंदियां ने शामिल होंदियां ने उत्थे फैसले होर भी टिकाऊ ते प्रभावशाली बन जाते हैं। यह सिर्फ समानता की गल नहीं है, यह एक बेहतर ते शांति पूर्व सम्मान जिहड़ा है संसार बनाउण दी जिहड़ी एक लोड़ है उस दे विच एक बहुत ही अहम भूमिका जिहड़ियां महिलावां निभाउंदियां ने।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। ब्रिक्स देशां ने दहशतगर्दी, साइबर खतरियां अते आलमी सुरक्षा चुनौतियां दा मुकाबला करन लई आपसी सहयोग वधाउण दा सद्दा दित्ता। कतर दे अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल फोन ते रास लाफान शहर च होए हादसे च 12 भारतीय नागरिकां दी मौत ते दुख प्रगट कीता। भारत ने पाकिस्तान दे कब्जे वाले कश्मीर दे हालात बारे पाकिस्तान दी टिप्पणी दी सख्त आलोचना कीती। कहा पाकिस्तान मनुखी अधिकारां दे काम तो ध्यान हटाउण दी कोशिश कर रहा है। भारत अते अमरीका दरम्यान तजवीजशुदा दवल्ले व्यापार समझौते दी समीक्षा लई नवीं दिल्ली च उच्च पदरी मीटिंग। अते फीफा फुटबाल विश्व कप च पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान नूं 5-0 नाल हराया। ते हुण खबरां विस्तार।

जी आए नू। मैं थोड़ी आज दोस्त राहिल थी। प्रोग्राम हम शुरू हो गया अड्डी टप्पा जिथे लगन के बैक टू बैक पंजाबी गीत ते तुहानू नचन ते मजबूर करेंगे ही। लो फिर नचन टप्पन दे ले हो जो रेडी पहला गीत तुहाडे ले।

इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

जी आए नू जी आए नू जी आए नू प्रोग्राम शुरू हो गया है। दिल अपना पंजाबी यानी दिल तो दिल तक पंजाबी। फिर सारिया के चेहरे पर फुलां वर्गी जड़ी है खुशी होनी चाहिए है, सूरज वांगू सारे चमकते होने ही है अज का जोड़ा साडा है। तो खास दिनों के जो अज गल करिए तो दस दिता से ना अज के खास दिन के अज कि टॉपिक पर गल करेंगे अपने प्रोग्राम यानी दिल तो दिल तक पंजाबी दे विच। जी हाँ, सानू कुदरत ने बहुत सारी देन दिती हुई है जिन्हों एक ने रुख जिन्हों अज टाइम वेख्या जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आप कटते तो जा रहे हैं, पर फिर भी कई लोगों रुखों के नाल इन्ना प्यार है। ये तो आप पुराने टाइम के भी वेख्या ने कि रुखों कट्टन के भी कई मूवमेंट चले ने। रुखों के नाल लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ दस दी, कर्नाटका दे विच एक पिंड एहो जिहा है जिथे रुख लगाए जाते हैं। किन्ने मतलब जदों किसी

0: उसमें भुट्टे लगाए हैं,
1: जी
0: अमरूद का, नींबू का, नीम का और कई सारे फूल लगाए हैं छोटे छोटे, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उसमें पानी देना, उनको साफ सफाई करना। और नीम के तो दो पत्ते सुबह वाश करके और दो पत्ते अमरूद के छोटे वाले जो ताजे फ्रेश, उनको वाश करके चबाता हूँ। और इसी के साथ दिनचर्या मेरी शुरू होती है। और मेरे को आपका प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
0: अभी मैडम जी किरण जी आती हैं जो हर रोज एक शायरी छोड़ गए
1: हाँ
0: और
1: जी।
0: कोई अच्छी चटपटी सी वो देखे
1: किरण नरूला जी,
0: कई अपने बहुत सारे श्रोता है जो बताते हैं अपनी संस्कृति के बारे में, अपने पंजाब की धरोहर के बारे में। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है दिल अपना पंजाबी, और मैं डेली सुनता हूँ, और इसके साथ अपना सफर भी बहुत अच्छे से कट जाता है। और मैं इसी के साथ सुशील कुमार, गांव पाकरपुर हरियाणा से आपसे विदा लेता हूँ। सत श्री अकाल जी।
1: देखिए जिदा कि सुशील जी ने भी किया हूँ, देखा इन्होंने मैसेज के ये भी दसता है रुखा बारे भी दसता है, तो नाल ही हो किरण जी बारे भी गल कर दी थी। आपस के कई होंगे ना कि अज उन्हों का मैसेज नहीं आया, हूँ तक उन्हों का मैसेज सुनाया नहीं गया या हूँ तक उन्होंने बारे दसिया नहीं गया। आप वेट कर दी एक दूजे के मैसेज की कि हूँ अज कौन की कहेगा, अज कि गल है जी सू याद रहेगी। तो इस अज मैं देख रही हूँ जो जिदा ही मैं क्या है ना कि रुखा की फोटो अमलताज की मैं गल की है, तो नाल ही कई घर अमलताज के रुख लगे हुए हैं, बहुत सारिया फोटोज भेजी कि नहीं है कि तुम मैं ए आई तो चक के भेजती है, इदा तो नहीं है ना, मैं ही उम्मीद करी इदा ना ही होना चाहिए। बहुत सारे रुख लगे हुए हैं, तो यह सानू जी एक होर फोटो भेजी है जिस अमलताज का रुख ने, तो होर भी रुख ने, यह सू भेजी है रवि पठानिया जी ने। तो नाल ही अगले मैसेजेस भी आ गए हैं, सुनते हैं ऑडियो मैसेज आए हुए हैं की कहना चाहते हैं साढ़े दोस्त।
2: धड़कते दिलों सुनते कना निमाणा जिहा स्रोता उदय चंद्र नमस्कार आखदा है, बुद्ध काम शुद्ध ते टिकाणे रवे बुद्ध, अज बुद्ध नूं अशुद्ध नहीं करांगा, अज गुस्सा नहीं करांगा, इस पक्के वादे नाल कम्मां कारां ते जाओ जी। अज मनोरंजन ते जानकारियां नाल अकलमंद बनाउण वाला रेडियो रेनबो FM चैनल दे मोर्चे ते साडी धी राणी राहिल ने मोर्चा संभालिया, ते वंदे मातरम नाल निघा स्वागत आप भी ते शहनाई वादन नाल भी स्वागत कीता, ते 11 बजे तक प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां तो जाणू करवाया, ते वंदना प्रोग्राम दी शुरुआत लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे, ते जिसके उपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे बाणी दे शब्दां नाल कीती, ते नाल रब नाल जुड़न वालियां गल्लां करके वातावरण नूं पवित्र बनाया। जय काल महाकाल नाल वंदना प्रोग्राम दी समाप्ति कीती। गुड मॉर्निंग नंदर विच आउंदिया मोटिवेशनल लाइना बोल के सानू सारिया नू ताकत दी खुराक दिती, छोटिया छोटिया गल्लां वल ध्यान दे के बड़े वड्डे नुकसान जां हादसे तो बचिया जा सकदा। पंडित ओंकार नाथ जी बारे दस के उपराला कीता, मोटिवेट भी कीता। पंडित ओंकार नाथ जी दी महात्मा गांधी जी भी तारीफ करदे हुंदे सी, साडे वास्ते भी ते संगीत विद्यार्थियों वास्ते अनमोल खजाने छड़ के गए, जिदा अध्ययन करके उन्हां दीआं पैड़ां ते चल के होर अगे भी जाया जा सकदा है। अड्डी टप्पा ते फिर अड्डी टप्पा है ये जो दिलां दी दिल तक धड़कन पहुंचांदा है। अज बुधवार है, मूड ते हमेशा ही खुश होना ते रखना चाहीदा है। अज एक पाकिस्तानी शायर दी गजल आप जी नाल सांझी करन जा रहा हां जो आप जी नूं तरोताजा कर देवेगी। बुढ़ी नूं दबका मार बैठा मैं की दसां फिर की होया, बस जी जी जी जी जी होया मैं की दसां फिर की होया, जो नहीं होना सी ओ होया मेरा ब्लड प्रेशर लो होया, एक पासा मेरा सुत्ता सी बार गली च भौंकदा कुत्ता सी, मैं अपने आप नू शेयर करा दबके दी कोशिश फेर करा, मैथों पानी भी ना पी होया मैं की दसां फिर की होया, ओ गुस्से दे नाल लाल होवे मेरा लागे मंदा हाल होवे, ना रोकन वाला कोई सी ओदे लागे चिमटा डोई सी, ओ फड़के उठ खलोई सी मैथों ए जीना ना जी होया मैं की दसा फिर की होया, फिर मैनू चढ़िया गुस्सा जी मैं पैरों लाया खुस्सा जी, मैं पुछिया किथे चली है मैं तुर चली वांडे जी, मैथों नहीं धुपदे भांडे जी, वेड़े विच फेरा बौकर जी।

102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो ते जी प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं तुहाडा अपना गीत बहार आरजे गरिमा दे नाल। सो बहुत सारे इदां दे गीत जो कि तुहानू 90s दा नॉस्टैल्जिया भी देंगे, तुहानू 20s दा टाइम भी याद दिलाएंगे, ते हुण तक दे जिन्ने भी प्यारे प्यारे गाने ने ओ भी मतलब ए सारे गाने दा मिक्सचर। सो ए सफर जो है ना गीत बहार प्रोग्राम दा शुरू हो चुका है, ठीक एक घंटे तक रहेगा, नाल नाल गीतां दी वार दे नाल गल्लां दी भी बहार जिहड़ी है ओ जारी रहेगी, बिकॉज आर जे गरिमा थोड़े नाल ओनली ऑन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो। सो की है ना कि ओरिजिनल ओरिजिनल रहिंदा है, एंड ए आइकॉनिक सॉन्ग जो है कॉकटेल दा ओरिजिनल वाला मैं प्ले कर रही हां थोड़े लिए, एंजॉय, स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो।

जी कॉकटेल फिल्म तो एक गाना एंजॉय कितना तो सी आइकॉनिक सॉन्ग तुम ही हो बंधु सखा तुम ही एंड यू नो व्हाट कॉकटेल टू भी रिसेंटली रिलीज हुई है एंड लाइक आई जस्ट लव्ड दिस मूवी ऑफ कोर्स मूवी का कॉन्सेप्ट चाहे थोड़ा जहा कह सकते हैं आप कि काफ़ी एडवांस्ड कह सकते हैं आप पर बहुत ही सिंपल है एंड दैट इज़ कि जो प्यार है ना वो हमेशा रहता है अट्रैक्शन जो है वो कटवद हो सकती है एंड डिस्ट्रैक्शन भी कटवद हो सकती है अटैचमेंट कटवद हो सकती है बट लव इज फॉर एवर एंड जो प्यार है ना लाइक शाहिद कपूर दा क्लाइमेक्स जो डायलॉग सीगा कि जो प्यार है ना वो एक वो बहुत ही पुरानी कसी हुई हल्की जी छेदना वाली टी शर्ट वांगू हुंदा है तो चाहे जितनी मर्जी पुरानी होवे चाहे छेद नहीं होदे पर सुकून उसी टी शर्ट विच मिलता है सो दैट मीन्स कि प्यार जो है ना इट्स सुकून ओके एंड जिथे सुकून है दैट मीन्स कि उत्थे जिथे सानू सुकून मिलता है दैट मीन्स कि येस दैट इज लव एंड बहुत प्यारा डायलॉग सीगा लाइक लास्ट जो एक पूरा एक कह सकते हैं कि मोनोलॉग सीगा शाहिद कपूर दा इट वॉज वेरी वेल रिटन जिदे विच ओ कहंदा है कि मतलब जो प्यार है मतलब वो जिस भी जिन्हों भी चुनता है मैं पूरा यू नो खराब नहीं करांगी तुहाडा जो कह सकते हैं आप एक्साइटमेंट क्लाइमेक्स देखने दी पर और जिन्हों भी चूज करता है एंड मतलब वो कितना ब्यूटीफुली कहता है कि यू नो तुम मेरी उस अलमारी जैसी हो बिखरी हुई अलमारी जैसी जिसमें जो मम्मी कहती है कि क्यों इतना ऐसा हाल बना रखा है अलमारी का पर मेरे को जो चीज़ चाहिए होती है मुझे वहीं से मिलती है सो इसलिए सुकून मुझे तुमसे ही मिलता है सो वाओ शाहिद कपूर ने जो क्लाइमैक्स दा जो परफॉर्मेंस किया ना मतलब दिल लुट के ले गए वंस अगेन शाहिद कपूर यू नो द एक्टिंग फिलहाल जी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक ऑफ द शो सुनते चले जाओ तुसी प्रोग्राम अपना तुहाडा गीत बहार मेरी यानी आरजे गरिमा दे नाल एंड एफएम रेनबो दे नेक्स्ट सॉन्ग स्टे ट्यून्ड

फ्रॉम इश्क विश्क टू कॉकटेल टू, मतलब क्या जर्नी सी ना शाहिद कपूर दी। आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहे थोड़ा अपना गीत बहार एंड जर्नी वैसे होर भी अगे है, होर पता नहीं केड़िया केड़िया फिल्मा दे रही ने शाहिद कपूर ने एंड अपनी एक्टिंग दे नाल किन्ना सरप्राइज करना है सारियां नू, राइट। फिलहाल गीत बहार प्रोग्राम दे विच अगला गाना मैं प्ले करांगी सोनू निगम एंड अलका याग्निक दा। एंड वैसे अलका याग्निक जी तो याद है, उन्होंने पद्म भूषण अवार्ड मिले रीसेंटली एंड ऑब्वियसली बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उन्हों का जो म्यूजिक इंडस्ट्री है इंडियन म्यूजिक है उसके विच। एंड द थिंग इज कि जो अलका याग्निक अवार्ड रिसीव करने के लिए गई सी पद्म भूषण अवार्ड, तो सोशल मीडिया से लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया कि अलका याग्निक जी ने इन्ना मेनो प्रतिष्ठित अवार्ड मिल रहा है तो वो इन्नी खुश क्यों नहीं लग रही है, इन्नी लेम क्यों लग रहे हैं। एंड बाद विच हुने रीसेंटली अलका याग्निक ने डिस्कलोज किया कि उन्होंने हैल्थ सही नहीं सी, वो कुछ सीरियस हैल्थ इशू तो सफर करते पे ने, करके उन्होंने उन्होंने बॉडी में इन्नी एनर्जी नहीं सी, स्टिल वो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से इस करके रिसीव करने के लिए गए। सो जज नहीं करना चाहिए इदा किसी ने भी, हर कोई खुश होंदा है अवार्ड लेंदे, जरूरी नहीं है कि कोई स्माइल नहीं कर पा रहा तो ईगो है कमांड है एंड समथिंग लाइक दैट। ओके सो एनीवेज अलका याग्निक जी एंड सोनू निगम की आवाज़ अगला गाना जो है आप इंजॉय कर लें फ्रॉम फिल्म धड़कन। तुसी प्रोग्राम गीत बहार विच बने रहो विद मी आर जे गरिमा, बिकॉज थोड़ी दिल की धड़कन जी है वही कह रही है कि नैक्सट गाना प्ले किया जाए। स्टे ट्यून टू एफएम रेनबो।

जी गाना इंजॉय किया इन प्रोग्राम गीत बहार विद मी आरजे गरिमा ओनली ऑन एफएम रेनबो। सो धड़कन फिल्म देव जो कि सुनील शेट्टी ने देव का किरदार निभाया, मतलब उस टाइम ऐसा लगता सगा जो धड़कन फिल्म आई सी कि

जी, इस गाने का सिग्नेचर स्टेप वैसे पहले माधुरी दीक्षित ने कुछ खास पसंद नहीं सिखा, बट सरोज खान वाज सरोज खान एंड तो दी माधुरी दीक्षित बीइंग माधुरी दीक्षित ने क्या इंप्लीमेंटेशन किया, तो शायर है इस लाइन के सिग्नेचर स्टेप नो, इस गाने के सिग्नेचर स्टेप नो। गीत बहार प्रोग्राम में चार जे गरिमा है थोड़े नाल आकाशवाणी एफएम रेनबो ते, एंड इस प्रोग्राम द लास्ट ट्रैक प्ले करने का टाइम आ चुका है। बहुत सारे ब्यूटीफुल अमेजिंग गाने जुड़े ने आप इंजॉय किए ने, हौले हौले फ्लैशबैक तक गए हैं। सो इट वॉज अमेजिंग जर्नी ऑफ प्रोग्राम गीत बहार टुडे, पर अगले प्रोग्राम में श्वेता मिलना है ना थानू, इस करके इस प्रोग्राम में तो वाइंड अप करना पैना है विद दिस अमेजिंग सॉन्ग। सुनते चले जाओ 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो, आरजे गरिमा है थोड़े नाल, नेक्स्ट प्रोग्राम्स विच वी स्टे ट्यून्ड।

0: 102.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम रेनबो तेजी प्रोग्राम शुरू हो चुका है पंजाबी तड़का आरजे गरिमा दे नाल ते साडे पहले कॉलर दे नाल आपां कर दिया फिर गलबात। हेलो,
1: कोशिश करो कि कोई आपसे न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे, रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसा निभाओ कि जिंदगी भर उस रिश्ते की डोर ना टूटे।
0: जी बहुत ही खूब, और तारीफ आपकी।
1: हाँ जी ग्रीमा जी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल।
1: डीपीओ कोटली थान सिंह डिस्ट्रिक्ट जलंधर तो मिंटू चंदेल जी।
0: मिंटू जी, की हाल चाल तुहाडा?
1: हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया
0: बहुत वधिया, बहुत खूब तुसी लाइन्स जिहड़ियां ने अर्ज कीतियां ने प्रोग्राम दी शुरुआत दे विच जी, बहुत वधिया लग्या
1: जी। मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी।
0: ओके जी, सो केड़ा गाना सुनोगे?
1: हाँ जी ग्रीमा जी, तुसी गाना सुना दियो बब्बू मान जी दा, बहुत ही अरसे बाद गाना प्ले होएगा रेडियो ते, दिल ता पागल है।
0: दिल ता पागल है, एक्चुअली थोड़ा कुछ टेक्निकल ग्लिच दे चलते है गाना तो नहीं आ पा रहा, पर बब्बू मान दा गाना मेरे दिल विच तेरा घर होवे ओ वाला आप प्ले कर सकते हैं हुने।
1: चलो कोई नहीं, ऐसे ना दे भी बहुत अच्छा गाना है
0: जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मिंटू जी रेडियो ते कॉल करने दे लई, एंड ओके जी वधिया रहे तुहाडा दिन। ओके सो जी, ये गाना तुसी इंजॉय करो बब्बू मान जी दी आवाज़ दे विच, तुसी भी रेडियो ते अपनी जो एक एफएम रेनबो ते अपनी रेंडर्स लगा सकते हो, एंड दस्तरखान दे विच बहुत सारे गाने नहीं तुसी कोई प्ले करवा सकते हो। सो यस, अगले गाने वाल आपां रुख करिए, सुनते रहो पंजाबी तड़का प्रोग्राम आकाशवाणी एफएम रेनबो ते, आरजे गरिमा है जी तुहाडे नाल।

0: काफी कुछ कह गया है गाना। आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है जी, थोड़ा अपना पंजाबी तड़का आरजे गरिमा दे नाल। हेलो
1: गरिमा मैम, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: सोनू बोल रहे हैं जी, पिंड कूका तलवंडी, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला तो जी।
0: सोनू जी, की हाल चाल है?
1: हाल चाल बहुत अच्छे मैम, तुसी सुनाओ, तुसी कि मैम?
0: आप एकदम कैमो कैम, एकदम एज यू से चढ़दी कला। तड़का प्रोग्राम अपने फेवरेट गाने का तड़का लगा सकते हो। तब तक गाना इंजॉय करो, स्टे ट्यून टू एफएम रेनबो, आरजे गरिमा थोड़े नाल।
2: Thank you.

102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम में रेनबो तेजी प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी तड़का एंड मिलते हैं एक छोटे जे कमर्शियल ब्रेक तो बाद उसके बाद पंजाबी तड़का विच कॉल्स दा गल्लां बातां दा ते गाने दा सिलसिला जारी रहेगा स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया।

0: अन समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
1: पर की उस दे लई मेनू दिल्ली जाना पाएगा?
0: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
1: अप्लाई किवें करिए?
0: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 0112311-2428 ते संपर्क करो।
1: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर के उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

0: 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाश वाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा तुहाडा अपना पंजाबी तड़का एंड अगले गाने दा तड़का आपां लगावांगे कौन लगाएगा हेलो
1: हां जी मैडम जी सत श्री अकाल जी
0: सत श्री अकाल जी कौन बोल रहे हो
1: मैं जी चरणजीत सिंह चन्ना आनंद नगर नियर मकसूदा जलंधर तो बोल रहा जी
0: जी चरणजीत जी बहुत चिरा बाद गलबात हो रही है साडे नाल तां
1: चालू हो गया या, ते अगे साडे पिंडां दे विच कुड़ियां तरंजणा गाउंदियां सी भंगड़े पाउंदे सी ओ रीति रिवाज ही पता नहीं किथे अलोप हो गए आ मैं परमात्मा अगे अरदास करदा के ओ नवा जमाना पुराना जमाना फिर नवा हो जाए आज दे
0: नवे जमाने विच पुराना जमाना भी जेड़ा है ओ रच मिच जाए यही तुसी चाहंदे हो
1: हां जी हां जी हां जी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बहुत वधिया लगदा हुंदा सी जी सांझ पैंदी सी जी प्यार दे नाल लोकी इकट्ठे हुंदे सी शमा नूं अज कल ते ओ जमाने ही ना अलोप हो गए
0: नहीं हर किसी के हाथ में फोन है तो किवें मिलनगे किवें गल्लां करनगे शामी इकट्ठे होके हर कोई फोन में डुबिया पिया है की करिए हाँ गल गलत है पर जो हो रहा है ओनू ही आप बयान करते पे एंड चलो एनीवेज वी रियली विश कि तुहाडी है जिहड़ी एक कह सकते हैं ख्वाब है जिहड़ा पूरा हो जाए कि थोड़ा जिहा पुराना जमाना भी इस नवे जमाने विच रच मिच जाए तो उड़ीकांगे उस दिन नू फिलहाल गाना इस गाने से सानू उड़ीक केड़ा गाना सुनना चाहोगे तुसी
1: मैडम जी लाल चंद जमला जी का गाना है ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆ
0: ਅੱਛਾ
1: ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਹੂ
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਨਾ ਜੀ ਓਕੇ ਆਲਰਾਈਟ ਸੋ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਰੇਨਬੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ ਅਗਲੇ ਗਾਣੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਟੂ ਐਫਐਮ ਰੇਨਬੋ ਆਰਜੇ ਗਰੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ

वेल जी, बड़ा सोना मुंह प्यार कर दी छनवे, सो बहुत ही प्यारा जो गाना, सुरिंदर शर्मा का ऑल टाइम सुपर हिट ट्रैक, राइट। आकाशवाणी एफ एम यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम चल रहे होम स्वीट होम आरजे गरिमा दे नाल। सो जी, जिन्नी जिस तरीके नाल धुप पै रही है ना, सो ट्रैवल भी जो लोग करते पे ने, पहाड़ों पर भी जा रहे हैं, उन्होंने भी सनबर्न हो रहा है, बिकॉज पहाड़ों पर की होंगे कि थोड़ा सनलाइट को बहुत चंगे तरीके पैंती है स्किन पर, सो ऑफकोर्स उ भी जाके जो एक यू नो सनबर्न है स्किन पर हो जाता है, तो ईवन का इधर अपने शहर भी रहते हुए उदों भी सनबर्न हो जाता है। सो एक रामबाण कह सकते हैं आप, दैट इज़ मुल्तानी मिट्टी, यस, जो कि साढ़े फेस का सनबर्न जो है उन्होंने भी यू नो छुमंत्र कर देगी, दो या तीन बार भी लगावे जिनी टैनिंग हो जाती है ना सारी की सारी निकल जाती है। सो आई जस्ट लव दिस। सो बाकी लवली लेडीज़ को बहुत वधिया तरीके पता है, दे आर रियली स्मार्ट कि ये गुलाब जल मिक्स करना है, आप शहद मिक्स करना है, किस तरीके अपने यू नो पपाया का जो चूरा हों मिक्स करना है, की करना है, यह तो सबनों पता है, बाखूबी पता है, राइट। सो जी एनीवेज, जो एक देसी चीज़ होंगी है ना, जिमें देखो विरासतन चली आ रही है, बहुत ही साड़ी परदादियाँ उन्हां दी भी मम्मिया, मतलब परदादियाँ दी भी मम्मिया भी मुल्तानी मिट्टी जिहड़ियां ने लगांदियां होणगियां, एंड इस करके तो जो देसी चीज़ा है ना उहदे विच मैजिक ही बिल्कुल अलग हुंदा है। ताइयों तां विआह शादियां तो पहला जिहड़ा वटना है तैयार किया जाता है, सारिया घरेलू चीज़ा पा के दुल्हन नूं प्रॉपरली उहदा ग्लो लियाउण दे लई, उहनूं ग्लैमअप करन दे लई, सो उह तां मतलब उहदी तां कोई रीस ही नहीं हैगी, है ना। सो इस तरीके नाल ब्यूटी दे नाल नाल खाण पाण दे विच वी जो सारिया देसी चीज़ा ते उहदी कोई रीस नहीं हैगी। यू नो वट, रीसेंटली मेरे कज़न ने किया कि यू नो उन्हें पूरी कैलकुलेशंस लगाइया कि जदों तो यह जिहड़ियां फूड ऑर्डरिंग एप्स स्टार्ट हुई ने उदों तो लैके हुण तक किन्ना उहदा टोटल खर्चा जिहड़ा है वह यू नो होया होएगा, पूरा का पूरा जरा खर्चा है किन्ना होया होएगा, एंड ही एस्टिमेटेड कि ऑलमोस्ट इन्ने साल तो मतलब ऑलमोस्ट 9 या 10 साल के अगले ने 10 लैक्स प्लस दियाँ जिहड़ियां फूड आइटम्स ने, मतलब जो भी सब्जी चाउमीन जो भी

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1 ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन

इतना सारा सामान लेके जाने की क्या जरूरत है, वो तो एक गुलाब के फूल से भी मान जाएंगे. आकाशवाणी एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहे थोड़ा अपना होम स्वीट होम आरजे गरिमा दे नाल. पर जे ओ फूडी होन जर उन खाना पीना पसंद होवे तां फिर वैसे भी दिल तक दा दरवाजा जो है ओ तां बहुत ही टेस्टी टेस्टी फूड तो होके जाता है. बीट मैन और द वुमेन, मतलब अजकल तो इदा है कि हसबेंड से टेस्टी जो खाना जे बना के खिला देन वाइफ नू तो फिर वाइफ सोचती है कि वाह वाह वाह, मेरे सारे व्रत जड़े ने, मेरी सारी तपस्या का फल मैनू मिल गया. सो एनीवेज फिलहाल अच्छा आप गल करांगे वार्डरोब के बारे.

देखो जी, वार्डरोब यानी कि घर दे विच जो भी वो जगह वो अलमीरा या वार्डरोब जिहदे विच आपां बहुत अपने कपड़े वगैरह रखने हुंदे ने। सो द थिंग इज कि हमेशा ही ना इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि साडा जिहड़ा कमरा है उहदी स्पेस उहदे स्ट्रक्चर दे अकॉर्डिंगली ही आपां अपना जिहड़ा वार्डरोब है वो चूज़ करिए। देखो हर वार्डरोब इक्को जिहा नहीं हुंदा है, सही वार्डरोब जिहड़ा है वो चुनन दे लई उहदी जिहड़ी टाइप है उहदा जिहड़ा यूजेज है मतलब उहदे विच जो मटीरियल भी लगाया गया उहदा भी ध्यान रखना हुंदा है। दरवाजे का जो डिज़ाइन है वो कहो जिहा है, स्टोरेज की जिहड़ी अरेंजमेंट हैगा स्टोरेज का वह भी समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो सब तो पहला तो देखो डोर जो है वह मकैनिज़म दे जो भी वो मकैनिकल तरीके जो बनया हुआ है उन्होंने पहले थोड़ा जहा समझना चाहिए फिर चूज़ करना चाहिए। सो वार्डरोब का जो दरवाजा है वह साढ़े कमरे की जगह होर भी ज़्यादा जो मतलब कमरे की जी जिनी भी स्पेस हैगी अकॉर्डिंगली चुनना बहुत जरूरी है। देखो जे कमरे का शेप है वो अनुसार आप जो सही ऑप्शन नहीं चूज़ करते तो उही वार्डरोब ना रोज़ सानू बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है, सब कुछ मिसमैनेजमेंट हो सकता है तो बहुत ज़्यादा सानू फिर लगेगा कि वार्डरोब जो है उन्होंने हटाई दी है कमरे तो। सो देखो अलग अलग तरीके के वार्डरोब्स होंगे ने जिवें कि हिंज डोर वार्डरोब जो होंगे है। देखो छोटे कमरे के हिंज डोर वार्डरोब जो है ना वो सही नहीं होंगे बिकॉज वो जो दरवाजे ने खोलन के लिए ना थोड़ा ज़्यादा स्पेस की लोड़ होंगी है, तो जेकर कमरे के पहले ही बहुत ज़्यादा फर्नीचर है तो वो जो उ दरवाज़ा ना हिंज डोर वह वार्डरोब का वह बहुत बड़ी होर्डल बन सकता है। सो व्डे कमरिया के लिए सॉफ्ट क्लोज जो हिंड वार्डरोब जोड़े ने वो सही रहेंगे ने, टिकाऊ रेंगे ने, भरोसेमंद रेंगे ने, तो यदा यूजेज भी बहुत ही आसानी सुविधा के नाल हो सकता है। एंड इस तो इलावा होर भी जिमें कि स्लाइडिंग डोर वार्डरोब होंगे बिल्कुल स्लाइड करके जरा दरवाजा जिदा खुलता है छोटे बैडरूम्स के लिए बहुत वधिया रहा है एंड बिकॉज दरवाजे को खोलन के लिए एक्स्ट्रा स्पेस की लोड़ नहीं होंगी। हालांकि ये एक टाइम तो वार्डरोब का केवल एक ही आप हिस्सा जोड़ा वो देख सकते हैं बिकॉज स्लाइड करना है, कभी इधरला हिस्सा दिखेगा सानू स्लाइड करके डोर वार्डरोब का, कभी उधरला हिस्सा दिसेगा, पर स्पेस बच जाएगी जो कमरा छोटा है तो बहुत बहुत वधिया होंगे ने स्लाइडिंग डोर वार्डरोब्स बहुत वधिया होंगे है। तो तीसरा है बायफोल्ड डोर वार्डरोब, मतलब बायफोल्ड डोर वार्डरोब जो है ना हिंज एंड स्लाइडिंग वार्डरोब के विच वाला ऑप्शन होंगे है। मैं तुम दसदी हाँ देखो ये जो दरवाजे ने खुलन दे विच ही मुड़ जाते हैं, मतलब खुलते हैं पर पूरा नहीं खुलते, वह फोल्ड हो जाते हैं जिद नाल घट जगह की मतलब थोड़ी जी घट जगह की ही लोड़ पैंदी उस दरवाजे ने खोलन के लिए। एंड वार्डरोब का थोड़ा अद्धा अद्धा हिस्सा ही जोड़ा है वो आप सानू दिखता है, पर ऑब्वियस जी गल है भी बहुत। सो इस तरीके अपने बैडरूम में देखो तो जी एक किस तरीके यूज़ करना चाहिए अपनी कन्वीनियंस में देखो, फिर तुम जो वार्डरोब्स ने उन्होंने खरीदो एंड थोड़ा जहाँ उत्ते वर्क करना पैंता है। एंड लेडीज़ आर रियली स्मार्ट, वो तो वैसे भी सब कुछ रिसर्च वर्क करके जाती हैं, अजक AI का जमाना है एंड सब कुछ वो एकदम अपने कार्ड को सजा सकदियां ने बहुत ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी के नाल, अपना दिमाग लगा के एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने दिल के नाल ही तो कार्ड को सजादियां ने। एनीवेज मूविंग ऑन टू द नैक्सट ट्रैक ऑफ द शो प्रोग्राम होम स्वीट होम के बहुत सारी गल्ला हले आप करनिया ने, आरजे गरिमा के नाल बने रहो, स्टे ट्यून टू FM रेनबो।

वुमेन कैन डू एवरी थिंग, इट्स जस्ट दैट कि तुहानू प्रायोरिटाइज भी करना पैंदा है कई बार. फॉर एग्जाम्पल, कई बार सानू उस जगह पर पहुँचना पैंदा है जो कि साडे बिजनेस दे लई, साडी जॉब दे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है इस वक्त. तो तुसी थोड़ा जा निगलैक्ट कर सकते हो अपने घर के काम नूं, एंड जिथे पता है कि साडे बगैर घर सड़ना नहीं है, मतलब साडा होना सब तो ज़्यादा जरूरी है, तो थोड़ा जा अपने यू नो उस बाहर के काम नूं बैलेंस कर सकते हो. पर प्रायोरिटी जिहड़ी सैट करना है ना, वो साडे उत्ते हुंदा है कि सानू लाइफ दे विच की चाहिए, उस दे अनुसार सानू प्रायोरिटीज़ नू सैट करना चाहिए. हर एक दे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, नॉट ओनली फॉर वुमेन, राइट. एंड देखो ना, वुमेन कैन डू एनी थिंग. रीसेंटली इंडिया दी जो यू नो हॉकी टीम है, वुमेन्स हॉकी टीम, उन्होंने हॉकी वुमेन्स नेशन दे विच क्या रिकॉर्ड तोड़ू जिहड़ा यू नो मैच खेडिया है, तो टाइटल अपने नाम किया है. यू नो न्यूजीलैंड उन्होंने ही जगह पर हराया है, फाइनल्स दे विच 2-0 तो जीती है इंडिया दी वुमेन्स हॉकी टीम. सो वुमेन कैन टू डू एनी थिंग. देखो ना, लास्ट ईयर जो T20 वर्ल्ड कप है, वो भी इंडिया दी जो वुमेन्स टीम है उन्होंने जितया सीगा फर्स्ट टाइम. सो जरूरी नहीं कि जो अज नहीं होया कल कभी हो नहीं पाएगा, सब कुछ पॉसिबल है. एंड इम्पॉसिबल की फुल फॉर्म पता की होंगी है, आई एम पॉसिबल, कि यस ए हो सकता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. सो जी, ऐसे थॉट दे नाल होम स्वीट होम तो आरजे गरिमा साइन ऑफ कर दी है. लॉन्ग लाची गाना प्ले करके जावांगी मैं. एंड मैं कितने यहाँ ले, मैं एक घंटा होर हैगी हाँ थोड़े नाल प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज दे थ्रू तुहानू मिलांगी बस थोड़ी ही देर तक. सो तद तक तुसी फिलहाल गाना इंजॉय करो, सुनते रहो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM रेनबो.

ओके जी, शुरू हो गई लव स्टोरी आकाशवाणी एफएम रेनबो पे। प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज आरजे गरिमा दे नाल। सो जी, हर एक दी लव स्टोरी हुंदी है मिड डे मेलोडीज प्रोग्राम दे विच। मतलब मेरा कहना था कि जो म्यूजिक है उदे नाल साडी जिहड़ी लव स्टोरी है ना, वो होर भी ज़्यादा परवान चढ़ जाती है जदों आकाशवाणी ते इन्ने प्यारे प्यारे जिहड़े गाने ने प्ले हुंदे ने। तां वैसे फिलहाल यह जिहड़ा गाना है यह बॉलीवुड ट्रैक है 1986 की फिल्म आखिरी रास्ता तो, एंड आखिरी रास्ता मोहम्मद अजीज़ एंड एस जानकी की आवाज़ के गाना तुम इंजॉय किया। म्यूजिक जो है दिता से इस गाने का लक्ष्मीकांत प्यारे लाल दे नाल, एंड लिरिसिस्ट आनंद बख्शी साहब। एस ऑफकोर्स इस फिल्म के अमिताभ बच्चन, जया प्रदा एंड श्रीदेवी सगे, एंड अमिताभ बच्चन डबल रोल दे विच, यू नो, फादर सन सेम सेम। सो बहुत सारी फिल्मों जो अमिताभ बच्चन की आदि सी जिस उन्होंने डबल रोल हों तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का लैवल जो भी डबल हो जाता है फिल्म के रिलीज़ तो पहला ही। फिलहाल अगला गाना तुम इंजॉय करो आकाशवाणी एफएम रेनबो पे। प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज़ विद मी आरजे गरिमा।

भाई आवाज मैं ना दूंगा ये गाना तो सी एंजॉय की आकाशवाणी एफ एम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा है जी तुहाड़ा अपना मिड डे मेलडीज आरजे गरिमा दे नाल गाना फिल्म 1964 दी सुपर हिट फिल्म दोस्ती।

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 28 जून 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नैशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री होरां दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स FM 102.7 मेगाहर्ट्स DTH दी AIR पंजाब सेवा DRM 864 किलोहर्ट्स FM 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती FM 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर FM 100.9 मेगाहर्ट्स FM 100

मेरा नाम तो आरजे गरिमा है एंड टाइम हो चुका है प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज तो साइन ऑफ करन दा यस 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो ते आरजे गरिमा साइनिंग ऑफ बिकॉज बहुत सी गल्ला में कर ली आज एंड फिलहाल आरजे सुरभी इज देयर टू टेक ओवर द स्टूडियो सो कहना मैं ही चाह रही हूँ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अपना रखो बहुत सारा ख्याल अपने आप में करो बहुत सारा प्यार हंसते वाजते रहो ते सुनते रहो एफएम रेनबो बाय बाय

कि किसी ने बहुत खूब कहा है कि किसी ने बहुत खूब कहा है कि हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। मेरी बातों में मजाक होता है, मेरी बातों में मजाक होता है, पर मेरी हर बात मजाक नहीं होती। मैके जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, की हाल चाल है जी। वेरी गुड आफ्टरनून। वज के ने पूरे दो ते प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है जी दिल आज शायर है। कई बार जिंदगी दे कुछ एहसास अजिहे हुंदे ने जो शब्दों दे विच बयान नहीं हुंदे, पर जदों ओ उही एहसास शायरी दा रूप लैंदे हन ना, तां सिद्धे दिल तक पहुँच जाते ने। सो दोस्तों, कुछ गल्लां चुप रह के भी कह जांदियां ने, कुछ यादा हसते हसते रुला जांदियां ने। कौन कहंदा है मुहब्बत सिर्फ मिलन दा नाम है, कई बार दूरियां भी रिश्तियां नूं होर गहरा बना जांदियां ने। सो दोस्तों, अज दा ये सुहाना सफ़र, ये सुहानी महफिल दे विच असीं गल्लां करांगे प्यार दियां, यादा दियां, सुपनिया दियां अते उहनां अहसासां दियां जो हर दिल विच किते ना किते वसते हन। सो तैयार हो जाओ अपनी आर जे दोस्त सुरबी दे नाल इस सफ़र दे लई, जिते हर नज़म एक कहानी है अते हर शायरी एक जज्बात। चलो शुरू करदे हां दिल आज शायर है प्रोग्राम नूं एक ब्यूटीफुल गज़ल दे नाल। इस नाल खास अनाउंसमेंट जिहड़ी तुहानूं सब नूं पता है कि ये शायरी सिर्फ मेरी नहीं है, ये दिल दे जज्बात तुहाडे भी होणगे। नंबर है जी 9855 10 10 23, 9855101027। इस नंबर ते तुसी सानू अपनी शायरी लिख के भेज सकते हो। खास गल तो ये भी याद है तुहानू कि शायरी अगर तुहाडी अपनी है तो बहुत वधिया गल है, पर जे शायरी तुसी किसी होर दी भेज रहे हो तो उन्हों का नाम जिहड़ा लिखना नहीं भुलना है। अपना नाम तो चलो नहीं भुलना। सो नंबर अनाउंस कर दिता है जी, हुण तुहाडे हाथ है जी, तुहाडी पेन कापी जो भी लगा लो, अजकल तो मोबाइल फोन है, तो शुरू हो जाओ लिखने अपने जज्बात ते शेयर करो अपनी दोस्त आर जे सुरभी दे नाल। इस ब्यूटीफुल गज़ल तो बाद मुड़ के आउंदी हां जी, फिर देखदी हां किन्नियां ने मैनू अपने दिल की गल अज शेयर की है।

इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतने के लिए। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व

0: दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना। जी किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और

0: आपको बता दे श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब स्तर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ceiet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।

0: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
0: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
0: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
2: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
0: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
2: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
4: जी

0: डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
1: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी, मैं प्रस्तुत हूं।
1: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के दो पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी, अवश्य।
2: फादर कामिल बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
3: ओह, अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
3: जी।
2: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
4: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
2: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
0: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
0: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
0: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
0: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
0: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
0: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
5: जी।
2: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
4: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
0: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि

0: आशाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
1: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
2: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है, बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
2: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
1: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां सेहत से जुड़ी हर बात हम आप तक पहुंचाते हैं। आपसे जुड़ते हैं प्रतिदिन इसी चैनल पर इसी समय, और आप रहते हैं हमारे साथ उसी कार्यक्रम में जिसे आप प्यार से कहते हैं रेडियो डॉक्टर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे हमारे समाज में बहुत कॉमन होता जा रहा है, लेकिन उसके बारे में जानकारी अभी तक बहुत कम लोग अच्छे से जान पाए हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, लंबे वर्किंग आवर्स, अनियमित खान पान, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, इन सब का असर सबसे पहले हमारी सेहत पर पड़ता है और खासकर हमारे वजन पर। और वजन जब बढ़ जाता है, या यूं कहें कि बढ़ती जो ये मोटापे की समस्या है, ओबेसिटी की समस्या है, ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में हेल्थ समस्या बनता जा रहा है। तो ये जो सिर्फ देखने के लिए जब हम बात करते हैं कि ओबीस है या कोई मोटा है, तो वो लुक्स पर ही सिर्फ इफेक्ट नहीं डालता है, वो कभी कभी गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न कर सकता है। और इन सब के लिए जरूरी होता है वजन कम करना, पर कई बार कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो हर तरह से डाइट प्लान करने के बाद, जिम जाने के बाद, योग करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं पा पाते हैं। तो उनके लिए एक और तरीका है, उसी तरीके पर आज हम बात करेंगे, और वो है बेरियाट्रिक सर्जरी। क्या है बेरियाट्रिक सर्जरी और ये किस तरह का विकल्प है, और क्या इसे हम ये माने कि ये वजन कम करने का आसान तरीका है, या इसके भी कुछ गंभीर या रिस्की आउटकम्स हो सकते हैं, ये सारी बातें आज हमने सोचा हम इस कार्यक्रम में करें। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में आपको सही ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो रेडियो डॉक्टर्स मौजूद हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा रही हूं, क्योंकि आज हम इन सवालों पर बिल्कुल सही, साफ, अनबायस तरीके से जानकारी चाहते हैं हमारे अपने दोनों एक्सपर्ट से। तो हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे दोनों रेडियो डॉक्टर्स, डॉक्टर निखिल गुप्ता, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में, एसोसिएट डीन हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। नमस्कार डॉक्टर निखिल, स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
2: धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुकुंद खेतान, आप को चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस बेरियाट्रिक सर्जरी सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपको।
3: नमस्कार जी, और आप सभी का स्वागत है। और हम इस ओबेसिटी, जैसे मैम ने बताया, उसके बारे में अपनी जानकारी को थोड़ा बढ़ाएंगे।
1: जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों स्पेशलिस्ट को कि आप लोग आए हैं और समय निकाला है आपने, और इस कार्यक्रम में आप आज एक घंटे हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा इस बारे में एजुकेट कीजिए कि ये किस तरह की सर्जरी होती है। और इसके, क्योंकि मैंने टॉपिक इसमें यही रखा है कि बेरियाट्रिक सर्जरीज प्रोस एंड कॉन्स, क्योंकि जहां तक हमें पता है इस सर्जरी या हर सर्जरी के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान या रिस्क भी हो सकते हैं। तो हम आज उन दोनों पर जानकारी चाहेंगे आप दोनों से, और हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम के साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं आज भी जुड़ गए होंगे। आपको हमारे साथ रहना है इस कार्यक्रम में और अपनी समस्याओं को यहां हमारे रेडियो डॉक्टर्स के सामने रखना है, जैसे आप करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो जो दिमाग में आता है, पहले डॉक्टर मुकुंद आपसे पूछूंगे कि ये जो सर्जरी है बेरियाट्रिक सर्जरी, व्हाट इज दिस?
3: बेरियाट्रिक सर्जरी इज बेसिकली, जब ये सर्जरी शुरू हुई थी आज से 2 दशक पहले, तब ये सर्जरी सिर्फ वेट लॉस सर्जरी के हिसाब से शुरू हुई थी। तब जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा वज़न वाले और वज़न की वजह से ही परेशान थे, बट पिछले 1 दशक में हमने क्या देखा है कि ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी है ये मेटाबॉलिक सर्जरी बन गई है। जैसा आपने अभी बताया कि ये खाली एक वजन के लिए नहीं है, बट ये वजन के साथ साथ बीमारियां जो अपने साथ लाती है उनको ठीक करने का एक मेजर तरीका है, जो मरीज अपनी एक्सरसाइज या डाइट या और

0: किसी तरीके से अपना वजन नहीं कर पाते। तो ये बैरियाट्रिक सर्जरी एक तरीके से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। ये होती तो 19th सेंचुरी 1958-59 में शुरू हुई थी, बट
1: अच्छा।
0: तब ओपन सर्जरीज होती थी। तो ओपन सर्जरीज की अपनी प्रॉब्लम्स होती थी।
1: बिल्कुल।
0: अब ये जब से लैप्रोस्कोपी या दूरबीन पद्धति वाला इरा शुरू हुआ है, इसने इस पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया है। और अब ये इतनी कॉमन हो गई है कि अगर हम देखें तो रोज, अगर मान के चले हम, अगर दिल्ली शहर में भी माने तो रोज करीब 100 मरीज इसके ऑपरेट होते होंगे। तो ये
1: अच्छा
0: इतना कॉमन सर्जरी हो गई है।
1: जी, पर अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो इस बारे में हमें जाननी जरूरी हैं। अभी तक लोग उतनी सही तरीके से इसके बारे में जानकारी जुटा नहीं पाए हैं, और इसीलिए रेडियो डॉक्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर मुकुंद ने हमें कहा कि बहुत सारी और कारण होते हैं जो वेट कम होना चाहिए, जिसमें बीमारियां जो हो जाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर निखिल, कि अगर कोई ओबीस है, ओवरवेट है, सबसे पहले तो कैसे पहचानेंगे, वो कैसे, उसकी कैटेगराइज कैसे किया जाता है, जैसे BMI जिसकी बात लोग जानते हैं, और सेकेंडली कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हो जाती हैं अगर मोटापा हो तो।
2: देखिए, जैसा डॉक्टर मुकुंद सर ने बताया, और अगर हम बात करें आज से 40-50 साल पहले, खास तौर पे अपने देश की बात करें, तो जब भी हम किसी मोटे आदमी से मिलते थे तो एक इम्प्रेशन माइंड में आता था भी खाते पीते घर का है आदमी या औरत। लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये एक खाते पीते घर की निशानी नहीं है, ये एक बीमारी है। और सिर्फ मरीज वो इंसान कैसा लगता है, सिर्फ लुक्स की बात नहीं है। मोटापा अपने आप में पूरा पैकेज है, अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। या मैं ये कहूँगा कि शायद ही शरीर का ऐसा कोई सिस्टम होगा या ऐसा कोई ऑर्गेन होगा जिसकी बीमारी मोटापे के साथ एसोसिएटेड नहीं है। आप ये इसको ऐसे कल्पना कीजिए कि एक 60 किलो के आदमी के ऊपर अगर 120 किलो का वजन उसको उठाना पड़ जाए तो उसके शरीर के सारे हिस्से किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। उसके हार्ट को डबल काम करना पड़ रहा है, उसके फेफड़ों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उसके जोड़ जल्दी घिस रहे हैं, उसको शुगर, ब्लड प्रेशर, कई तरह के कैंसर, ये सारी बीमारियां हैं जिनसे वो आदमी अफेक्ट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मोटापे की वजह से। और अगर अपने वो मोटापे पे काबू पा ले, जिसमें सबसे पहले तो हम यही सलाह देते हैं, खाने पीने की
1: जी
2: सलाह,
1: जी
2: एक्सरसाइज, अपना डाइट रेगुलेट
1: डाइट
2: करके, लेकिन अगर कोई मरीज ये सब करके भी अपने मोटापे से छुटकारा नहीं पा पा रहा है, तो अब आज की डेट में बैरियाट्रिक सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी अवेलेबल है जिसकी मदद लेकर वो दोबारा से फिट हो सकता है और इन सब बीमारियों से काफी हद तक छुटकारा पा सकता है। अब मोटापा कहते किसको है?
1: जी
2: मोटापे के लिए बेसिकली जो शरीर का वजन कितना होना चाहिए, ये या मोटापे में है या नॉर्मल इंसान है, डिपेंड करता है उसका वजन और उसकी हाइट पे। जैसा कि ये समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि हर आदमी का आइडियल वेट उसकी हाइट पे डिपेंड करता है। तो BMI, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, वो निकाला जाता है वजन किलोग्राम में, और इसको अगर डिवाइड किया जाए हाइट मीटर में, उसका स्क्वायर, तो वेट बाय हाइट मीटर स्क्वायर, तो इससे BMI निकलता है। BMI ऑन एन एवरेज कहते हैं 25 से 28 के बीच में रहे तो वो एक आइडल रहता है। अगर हम मेटाबॉलिक सर्जरी की बात करें कि उसके लिए कब हमको जाना चाहिए, इंडिया अपने देश की बात करें सेटिंग में, तो नॉर्मली अगर पेशेंट का BMI 32.5 32.5 से ऊपर है, साथ में उसको कोई कोमॉर्बिडिटी या जो मोटापे के साथ जुड़ी हुई बीमारियां हैं जिनकी हमने बात करी अभी, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कुछ और, तो इस तरह के मरीज में हम मेटाबॉलिक सर्जरी कंसिडर कर सकते हैं।
1: इस बारे में और मैं डिटेल में जानना चाहूंगी आप दोनों से, कि किसकी सर्जरी की जा सकती है, किसको एक्चुअली सोचना चाहिए कि मैं इस तरह की सर्जरी कराऊं। पर यहां पर पहले हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, एक प्यारा सा गीत सुनेंगे। डॉक्टर निखिल की पसंद का ये गीत मैंने निकाला है, और वो सुनकर हम वापस आएंगे। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए, आप हमें मैसेज करिए, और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज हम बात कर रहे हैं बैरियाटिक सर्जरी, इसके फायदे और इसके नुकसान के बारे में। हमारे दो स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बात डॉक्टर निखिल ने भी बोली थी कि कुछ इतना बीएमआई से ऊपर होगा, जैसे 32 से ऊपर या कुछ तो किया जाता है। आप थोड़ा सा इसमें बताइए कि क्या यही एक क्राइटेरिया होता है कि बीएमआई, या कुछ और भी देखा जाता है, या कौन ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे करानी चाहिए कि नहीं?
1: देखिए, जब हम छोटे बच्चों में आजकल हम देखते हैं स्कूल में भी ओबेसिटी या वजन ज़्यादा हो रहा है, और करीब हम जब स्कूल का सर्वे, हमने भी आज से 3-4 साल पहले सारे स्कूल्स का दिल्ली का मिलकर के कुछ एसोसिएशंस के साथ किया था, तो हमने देखा था कि 25-30% जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो ओबेज हैं, है ना। ओबेसिटी मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ओबेसिटी। जैसे डॉक्टर निखिल ने बताया, क्लास 1 ओबेसिटी है कि हमारा बीएमआई जो है वो 23 से 28 हो। क्लास 2 ओबेसिटी है कि 23 से 28 से लेकर के 32.5 तक हो। और जो क्लास 3 ओबेसिटी में आ गए 32.5 वाले, उनको किसी तरीके की मदद चाहिए,
0: उन्हें चाहिए, चाहे
1: उन्हें
0: वो किसी
1: मदद
0: तरह से
1: चाहिए,
0: भी
1: वो
0: हो।
1: किसी भी तरीके से मदद चाहिए, क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाले तरीके हैं, जैसे आपने बताया कि डाइट है, एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, ये सब उनको फ्रूटफुल नहीं रिजल्ट्स दे पाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि एक बीएमआई एक क्राइटेरिया हो गया, दूसरा क्राइटेरिया होता है हमारा वेस्ट हिप रेशियो, है ना, कि वेस्ट और हिप रेशियो मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग होता है। मेल्स के लिए 0.8 से ऊपर हो, फीमेल्स के लिए 0.9 से ऊपर हो, तो हम कहते हैं कि ये आपका वेट ज़्यादा है, अगर वेस्ट हिप रेशियो बढ़ जाए तो। जैसे मैंने बताया कि यंग बच्चों में अगर हम देखते हैं तो हम परसेंटाइल देखते हैं, बीएमआई नहीं देखते, उसमें हम परसेंटाइल देखते हैं, परसेंटाइल वेट गेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कुछ हमारे क्राइटेरियाज हैं, बट ये मेन क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कि आपकी ओबेसिटी क्लास क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या तरीका है जो आपको वेट लॉस में मदद करेगा।
0: तो जैसे

0: कोई पेशेंट आपके पास आया ओबीस है, जिसको आप कह रहे हैं थर्ड कैटेगरी में फॉल करता है, तो क्या आप उसको अपने सामने वो सारे ऑप्शंस देते हैं अपार्ट फ्रॉम सर्जरी, कि आप लोग सर्जरी पार्ट ही डील करते हैं?
1: नहीं, ओबेसिटी जो है वो एज ए होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए।
0: जी
1: हम ये नहीं कह सकते, जैसे हमारा मेटाबॉलिक इंस्टीट्यूट है वहाँ, जहाँ हम ओबेसिटी एज ए होल को होलिस्टिकली अप्रोच करते हैं। यानी ये नहीं कि हमारे पास, बीइंग अ सर्जन, मेरे पास पेशेंट आया तो मैं उसको खाली सर्जिकल ऑप्शंस बताऊंगा।
0: यही मैं जानना
1: तो
0: चाह रही
1: उसको,
0: थी।
1: हमारे पास डाइटिशियन भी है, हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी है अलग से, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, एंड देन द लास्ट इज वेन वी कम इन टू पिक्चर, देन सर्जन कम इन टू पिक्चर।
0: यस, तो हमारे एक अभी श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए बात कर लेते हैं, कुछ पूछना है। हेलो।
2: हाँ जी नमस्ते मैडम जी और डॉक्टर साहब दोनों को भी
0: जी,
2: नमस्ते।
0: जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं और नाम बता दीजिए अपना।
2: मैं योगराज बोल रहा हूँ गुड़गांव से।
0: जी जी बताएं क्या पूछना है।
2: सवाल मेरा ये है जी, 23 साल की बिटिया है और उनका जो है वजन कम हो रहा है। 23 साल की बिटिया का वजन 35 किलो वजन है, उनका वजन कम होता है और

0: वो हॉलिस्टिकली अप्रोच करते हैं। यानी ये नहीं कि हमारे पास बीइंग अ सर्जन मेरे पास पेशेंट आया तो मैं उसको खाली सर्जिकल ऑप्शंस
1: जी
0: बताऊंगा,
1: यही मैं जानना
0: तो
1: चाह रही
0: उसको
1: थी।
0: हमारे पास डाइटिशियन भी है, हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी है अलग से, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, एंड देन द लास्ट इज व्हेन वी कम इन टू पिक्चर, देन सर्जन्स कम इन टू पिक्चर।
1: यस तो हमारे एक अभी श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए बात कर लेते हैं, कुछ पूछना है। हेलो
2: हाँ जी, नमस्ते मैडम जी और डॉक्टर साहब दोनों को भी
1: जी।
2: नमस्ते।
1: जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं और नाम बता दीजिए अपना।
2: मैं योगराज बोल रहा हूँ गुड़गांव से।
1: जी जी बताएं क्या पूछना है।
2: सवाल मेरा ये है जी, 23 साल की बिटिया है और उनका जो है वजन कम हो रहा है। 23 साल की बिटिया का वजन 35 किलो वजन है, उनका वजन कम होता है और खाना खाती है तो पेट में दर्द की शिकायत है। अल्ट्रासाउंड करवाया तो इन्फेक्शन आया हाथों में।
3: अच्छा योगराज जी, जैसा आपने बताया कि आपकी बिटिया का वजन कम हो रहा है और कुछ खाने पे पेट में दर्द भी होता है और जांचों में शायद पेट का इन्फेक्शन आप बता रहे हैं, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि वजन कम होने के बहुत सारी वजह होती हैं, जिसमें एक वजह पेट का टीबी भी हो सकता है या कोई और इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी बिटिया को लेकर जो है नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, फिजिशियन हो या सर्जन हो या पेट के डॉक्टर हो, उनसे मिलके जो ज़रूरी जांचें हैं जिसमें हो सकता है एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, दूरबीन की जांच या सीटी स्कैन वगैरह हो, जिससे कि बीमारी पकड़ में आए और उसका इलाज शुरू हो सके। हाँ
2: जैसे करवाया था
3: जी
2: तो उसमें इन्फेक्शन आया और 4-5 जांच और भी करवाई, जैसे टीवी की है या 6-7 जांच हमने करवाई लेकिन उसमें कोई बीमारी नहीं आई।
3: देखिए, अब ये तो सारी रिपोर्टें देख के ही कुछ बता पाएंगे। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पेट का टीबी एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी जांच में पकड़ पाना उसको आसान नहीं होता, और कई बार सिर्फ लक्षणों के आधार पे ही हमको दवाई शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी वजह यह है टीबी हमारे देश में खासतौर पर उत्तर भारत में बहुत कॉमन भी है। तो अगर उसके लक्षण उस तरफ जा रहे हैं तो टीबी की दवाई शुरू करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये फैसला जो डॉक्टर उनको देख रहा है, उनका इलाज कर रहा है, वो ही ले पाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि सारी जांचों की रिपोर्ट लेकर आप अपने डॉक्टर से मिलिए जिनसे भी आप इसका इलाज करा रहे हैं, और वो ही आपकी इसमें मदद कर पाएंगे।
1: चलिए धन्यवाद। एक और हमारे साथी हमारे साथ कॉल पर हैं। हेलो
4: हेलो,
1: जी जी नमस्कार।
4: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ
1: जी जी राजेंद्र जी बताएं क्या पूछना चाहते हैं।
4: जी, 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70-75-80 केजी के आसपास मेरा वेट है, वजन है। तो पहले तो शालिनी मैम को, शालिनी दा से ही नमस्कार,
1: जी
4: और
1: नमस्कार जी।
4: दोनों डॉक्टर साहिबान को भी नमस्कार।
5: नमस्कार जी।
3: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि किसी शख्स को या पेशेंट को अगर थायराइड है या शुगर है, डायबिटीज है, तो उसका वेट और मतलब मोटापा और वजन घटेगा या बढ़ेगा, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कई शख्स ऐसे मैंने देखे लाइफ में, कुछ भी खा ले कुछ भी पी ले, ना वो मोटे होते ना उनका वजन बढ़ता, वो बेचारे क्या करें। तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे कि उनके हिप्स पे और मतलब कुल्लों पे, टोंट पे और ये चेस्ट पे और गर्दन पे और गालों पे बहुत चर्बी होती है, वो लोग बेचारे क्या करें ये मतलब चर्बी और वजन घटाने के लिए। और चौथा सवाल मेरा ये है कि डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं वजन और मोटापा घटाने के लिए। और पांचवा, जो आप ये सर्जरी बता रहे हैं पैरावेटिक सर्जरी, तो इसमें अगर सर्जरी होती है तो इसमें मतलब इसमें टाइम कितना लगता है, खून खराबा ज्यादा तो नहीं होता, तो बड़ी मेहरबानी होगी।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो पूरा कार्यक्रम अपने प्रश्नों में समेटने की कोशिश की है राजेंद्र जी। बहुत सारी चीजें हैं, हम आप पूरा प्रोग्राम सुनेंगे आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, लेकिन हाँ आपके जो प्रश्न हैं डॉक्टर साहब उनके जवाब दे रहे हैं। सर बताएं, इन्होंने सबसे पहले ये पूछा था कि थायराइड शुगर जो जिनको होता है उनका वजन पर क्या इफेक्ट होता है इसका।
0: देखिए राजेंद्र जी, जो आपका थायराइड और शुगर है ना, ये दोनों ही तरीके से काम करता है। अगर हमारा थायराइड डिस्टर्ब्ड है या शुगर अनकंट्रोल्ड है तो हमारा वजन बढ़ता भी है। तो थायराइड की बीमारियां दोनों ही तरीके की होती हैं, जिसमें थायराइड लेवल्स बढ़ भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। तो अगर आपके थायराइड हार्मोन के लेवल्स बढ़ गए हैं तो आपका वजन कम होता है, अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन लेवल्स कम हो गए हैं तो आपका वजन बढ़ने लगता है। सिमिलरली ब्लड शुगर का है कि शुगर, ऐसा नहीं कि शुगर की बीमारी से वजन बढ़ता है या वजन कम होता है। अगर अनकंट्रोल्ड शुगर होगी तो आपका वजन बढ़ भी सकता है। अगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर हो जाती है जब, या कुछ शुगर की मेडिसिंस भी होती हैं जो हमारे वजन को कम करती हैं, तो ये जब तक हम जाँचें नहीं कराएंगे या कारण नहीं ढूंढेंगे, जब तक हम ऐसे डिक्टेट नहीं कर सकते टर्म्स को कि आपका थायराइड की वजह से वजन ज़्यादा या कम है,

0: या शुगर की वजह से ज्यादा कम है।
1: और कुछ लोगों का नहीं बढ़ता है ये भी उन्होंने पूछा था, चर्बी बहुत होती है उसका, तो बहुत सारी चीजें तो हम बात करते ही जा रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम में, लेकिन सर्जरी पे जो उन्होंने बात की जो हमारे इस कार्यक्रम से संबंध रखती है कि क्या इतना कितना समय लगता है इस सर्जरी में, और मैं इसमें और जोड़ूंगी कि इसमें जब सर्जरी के बाद डॉक्टर निखिल आप बताएं कि इसको नॉर्मल रूटीन में आने में कितना टाइम लगता है पेशेंट को।
2: देखिए अगर हम सर्जरी के टाइम की बात करें तो ये मेटाबॉलिक सर्जरी की 3-4 वैरायटीज़ हैं और हर सर्जरी का अपना अलग अलग टाइम है। फिर भी अगर हम मोटी मोटी बात करें तो 45 मिनट से लेकर आप कह सकते हैं करीब 2 घंटे इसमें लग सकते हैं, लेकिन सर्जरी से पहले का भी टाइम होता है, मरीज़ की पोजिशनिंग वगैरह, और इस तरह के मरीज़ अपने वजन की वजह से सर्जरी के लिए भी थोड़े से हाई रिस्क केसेस होते हैं, इनका हार्ट इनका लंग हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज लेवल पे है, तो उसको सर्जरी तक ऑप्टिमाइज करने के लिए एनेस्थेटिस्ट को भी यानी कि बेहोशी के डॉक्टर को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो टाइम लेकिन अपने आप में मैं कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानूंगा, ये सारे ऑपरेशन दूरबीन से यानी कि लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिक तरीके से होते हैं और कोई खून या ब्लड लॉस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता। 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में ऑपरेशन हो जाते हैं, 24 घंटे के बाद ही या कभी तो उससे भी पहले मतलब 12 घंटे के बाद मरीज को सिप्स यानी कि लिक्विड शुरू किए जाते हैं और 1 से 2 दिन के बाद मरीज के अस्पताल से छुट्टी भी हो जाती है। 6-8 घंटे में ही मरीज खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है और एक बार जब 24 घंटे के बाद मरीज लिक्विड्स ले पाता है और चल फिर पाता है तभी उसके अस्पताल से छुट्टी की जाती है। ये सब फायदे हैं लैप्रोस्कोपी के और सर्जिकल टेक्निक्स में जितनी एडवांसमेंट आई है उस सब के सारे फायदे हैं जो बेरियाट्रिक सर्जरी के मरीज को दिए जाते हैं
1: जी।
2: एक इनका सवाल बड़ा अच्छा था जो मैं चाहूंगा उसका जवाब देना, ये एक्चुअली में ये ऐसा देखा गया है कि एक फर्क है हमारे देश के मोटे मरीजों में और वेस्टर्न वर्ल्ड के मोटे मरीजों में। हमारे देश में इसको ट्रंकल ओबेसिटी हम कहते हैं कि पेट निकला हुआ है, कंधे और बाजू पतले पतले होंगे लेकिन सारा का सारा वजन जो है वो जिसको पहले जमाने में टोन कहते थे या बेली, लेकिन ये सबसे एशियन पॉपुलेशन में और सबसे ज्यादा खराब यही है जो ट्रंकल ओबेसिटी है। अगर आप बाहर के मोटे मरीज देखें वो 200-250 किलो के भी होंगे लेकिन वो लंबा आदमी है, कंधे चौड़े हैं उसके और उसके बाजू है उसकी थाइज है। यहाँ पे हम लोगों में हिंदुस्तानियों में या एशियन पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ ट्रंकल ओबेसिटी है जो ज्यादा खराब है, ये शुगर ज्यादा कॉज करती है। तो इसीलिए बाहर के मरीजों में मोटापा की सर्जरी की जाती है वजन कम करने के लिए ज्यादा, लेकिन हमारे देश में मोटापे के साथ बीमारियां बहुत जुड़ी हुई हैं इस फैट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से,
1: तो शायद ये हमारे लिए और उतना उपयोगी है,
2: हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। इसीलिए ये जो अभी हम BMI की बात कर रहे थे, BMI की सारी कट ऑफ एशियन पॉपुलेशन में वेस्टर्न वर्ल्ड से 2.5 कम है, मतलब बाहर के मरीज में इंडिकेशन 35 से ऊपर है BMI, लेकिन एशियन पेशेंट्स में यही BMI की कट ऑफ 32.5 से 32.5,
1: तो वो रीजन बिकॉज ऑफ
2: इन्हीं सब की वजह से
1: जी। तो आपने बताया कि जिस तरह से सर्जरी होती है वो तो एक आम सर्जरी की तरह होता है, उसमें वापसी भी लोगों की नॉर्मल लाइफ में वैसे ही है, लेकिन इस सर्जरी में एक्चुअली होता क्या है, और एक टाइप्स की भी बात कर रहे थे आप, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं डॉक्टर मुकुंद, आप भी बताएं कि ये कितनी टाइप्स की सर्जरीज होती हैं इसमें बेरियाट्रिक में।
3: जो बेरियाट्रिक सर्जरी है ये बेसिकली मेनली 2 तरीके की सर्जरीज होती हैं, एक रेस्ट्रिक्टिव जिसमें हम खाने की आपकी जो कैपेसिटी है उसको कम कर रहे हैं खाली,
1: अच्छा।
3: दूसरी होती है कि जिसमें रेस्ट्रिक्शन और माल एब्जॉर्प्शन, माल एब्जॉर्प्शन मतलब हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में पहले उसको डाइजेस्ट होता है, उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन्स में जाता है और इंटेस्टाइन्स उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है जिससे हमारे शरीर को एनर्जी और सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो वो कहलाती है माल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड माल एब्जॉर्प्शन है कि जिसमें हमारे खाने की कैपेसिटी तो कम हुई बट हमारा कुछ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन बायपास हो गया। जैसे हम शहरों में बायपास रोड देखते हैं वो बड़ी रोड है बट हमने ट्रैफिक को बायपास कर दिया, इसमें हम जो इंटेस्टाइन्स को बायपास करते हैं तो जो खाने का मिक्सिंग है विद द बॉडी जूसेस, मेनली जब खाना हम खाते हैं तो वो बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन से डिफरेंट ग्लैंड से जो हमारे जूसेस बन रहे हैं वो जूसेस उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, उन जूसों से जब तक वो मिक्स नहीं होगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपरली। तो जब हमने बायपास कर दिया तो उसका वो जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है कुछ हद तक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है जिसकी वजह से ये वेट लॉस में डबल तरीके से इफेक्ट करती है ये रेस्ट्रिक्टिव और माल अब्सॉर्प्टिव सर्जरीज।
1: लेकिन आपने बोला कि हम उसको बाईपास कर देते हैं तो क्या बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो जाएगी अगर किसी की ये सर्जरी हुई है तो?
3: ये जो जिन मरीजों में हम ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी वाला प्रोसीजर करते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज कहते हैं उनमें अमूनन हम देखते हैं जो वेजिटेरियन पेशेंट्स हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादातर पब्लिक वेजिटेरियन होती है, तो वेजिटेरियंस में

0: थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि उनकी डाइट में वैसे ही न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और दूसरा प्रोटीन्स कम होते हैं। तो हम जैसे पहले पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में भी, जब हम सोशल अपना पढ़ते थे, कि प्रोटीन कैलरी माल न्यूट्रिशन होता है, तो हम सिर्फ कैलरी माल न्यूट्रिशन चाहते हैं, ना हम प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन चाहते हैं, ना हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का माल न्यूट्रिशन चाहते हैं। तो कई बार इन मरीजों में हमें शुरू के कुछ टाइम, जब तक मरीज रिकवर कर रहा होता है, अपना वेट लॉस जर्नी में चल रहा होता है, उस जर्नी के दौरान हम उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेने के लिए एडवाइस करते हैं।
1: ओके, तो सप्लीमेंट्स देने पड़ सकते हैं, और बाद में जब वो ठीक हो जाए तो उसके बाद भी क्या डॉक्टर निखिल बताएं कि किस तरह का खान पान उन्हें रखना होता है या प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, क्या तब भी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं या टेस्ट कराना पड़ता है?
2: देखिए, बिल्कुल सही जैसे अभी बात बताई कि बाईपास सर्जरी के बाद खास तौर पे कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स की या सप्लीमेंट्स की मरीज को जरूरत पड़ सकती है, और उसको रेगुलर फॉलोअप में रखा जाता है, टाइम टू टाइम उसके हाँ टेस्ट जरूर कराए जाते हैं, और एक बार जब एडिक्वेट वेट लॉस हो जाता है या जो हमारा टारगेट वेट है वो अचीव कर लेते हैं, उसके बाद ये सप्लीमेंट्स बंद किए जा सकते हैं। अगर पेशेंट ने अपना वेट लॉस अचीव कर लिया है, एक आइडल वेट कर लिया है, उसका लाइफस्टाइल, डाइट मॉडिफिकेशन ये सब हो गई है, तो इन सप्लीमेंट्स को बंद किया जा सकता है पहली बार। लेकिन तब भी मैं जरूर कहूंगा कुछ कुछ मरीजों को इनकी रिक्वायरमेंट लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर दिन में एक गोली लेनी भी पड़े तो। लेकिन इसके जो फायदे हैं, जो उसके उससे अगर हम इसको कंपेयर करें, क्योंकि वही मरीज जो ऑपरेशन के पहले दिन में ब्लड प्रेशर की और शुगर की 5-6-7 गोलियां खा रहा था, वो सब बंद हो जाती हैं, डायबिटीज ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, हार्ट अटैक का खतरा कम हो गया, एस्थमा में
1: ये दवाइयां इमीडिएट बंद हो जाती हैं उसके बाद,
2: बहुत जल्दी।
1: अच्छा,
2: बहुत जल्दी, बिल्कुल। तो इनफैक्ट हम ऑपरेशन के एकदम बाद तो पहले बंद ही करते हैं सारी दवाइयां, और फिर टाइम टू टाइम उसके टेस्ट करा के देखते हैं कि अब उसको इसकी जरूरत है कि नहीं है। काफी मरीजों में दवाई बंद हो जाती है, मोस्टली पेशेंट्स में अगर बंद नहीं भी होती है तो रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाती है, दैट इज फॉर श्योर।
1: जी, यहाँ पर हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं, गीत सुनेंगे, और ये गीत डॉक्टर मुकुंद की पसंद का है तो हम सब आनंद लेते हैं इस गीत का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है रेडियो डॉक्टर, और अभी बहुत सारी बातें पूछना बाकी हैं। आप भी कनेक्ट हुई है हमारे साथ फोन लाइन पर और व्हाट्सएप के जरिए।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज बात हो रही है बैरिएट्रिक सर्जरी पर, और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ गए हैं। हमें देवदत्त पारसोलिया जी ने लिखकर भेजा है, नमस्कार टू रिस्पेक्टेड आरजे रेडियो डॉक्टर एंड ऑल टीम ऑफ एफएम रेनबो, नाइस टॉपिक, गुड वॉइस एंड सुपर प्रोग्राम, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। और ये एक मैसेज आया है, लिखा है परिधि ने दिल्ली से, ग्रेट टॉपिक, थैंक यू। इनका एक क्वेश्चन है कि हाउ इज लिपोसक्शन डिफरेंट देन बैरिएट्रिक सर्जरी, एंड डू बैरिएट्रिक सर्जरी लीव लाइफ लॉन्ग सर्जरी मार्क्स, और इज इट मिनिमल इन्वेसिव? ये दो चीजें पूछी हैं।
2: परिधि, मैं आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये बहुत सारे जो पब्लिक है उनके दिमाग में रहता है कि ये किस तरीके की सर्जरी है बैरिएट्रिक सर्जरी, और ये लाइपोसक्शन से कैसे डिफरेंट है। तो लाइपोसक्शन एक तरीके की कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसमें हम वजन की वजह से जहाँ जहाँ शरीर में हमारी चर्बी, तो चर्बी जैसे डॉक्टर निखिल ने पहले भी बताया कि चर्बी दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक तो हमारे शरीर में बाहर चमड़ी के नीचे है जिसको हम पेरिफेरल फैट कहते हैं, है ना, एक हमारा विसरल फैट है, जैसे हमारा ट्रंक में जो इकट्ठा है वो खाली पेट में बाहर भी इकट्ठा है, और पेट के अंदर जो विसरा हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें और उसके आसपास भी इकट्ठा है। तो ये जो लाइपोसक्शन है, ये हम जो पेरिफेरल फैट है स्पेशली जैसे थाइज में हो गया, आर्म्स में हो गया, एब्डोमन में हो गया, बैक में हो गया, वेस्ट में हो गया, कहीं हिप्स में हो गया, वहां से हम सिर्फ चर्बी की जो सेल्स होती हैं उनको सक्शन करके निकाल लेते हैं, उसको हम लाइपोसक्शन कहते हैं। तो ये प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरी है जो बॉडी शेपिंग सर्जरी है, और जो हम बैरिएट्रिक सर्जरी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अब मेटाबॉलिक सर्जरी है, ये सिर्फ वेट लॉस सर्जरी नहीं है, वेट से एसोसिएटेड बीमारियों को भी ठीक करने में हमारी मदद करती है। तो ये ओवरऑल वेट लॉस में हेल्प करती है, नॉट ओनली पेरिफेरल बट विसरल फैट भी कम करती है, जिसकी वजह से हमारी बीमारियों की जो जड़ है।
1: हम इसको ऐसा समझें कि वो सिर्फ लुक्स पे इफेक्ट डालेगी और ये आपके हेल्थ पे इफेक्ट डालेगी, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और इन्होंने ये जो पूछा कि क्या बैरिएट्रिक सर्जरी में क्या सर्जरी मार्क्स रह जाते हैं लॉन्ग टर्म, या इसको रोबोटिक, या आप जैसे बता रहे थे कि आजकल मिनिमम इन्वेसिव तरीके से किया जाता है तो वो मार्क्स नहीं रहते हैं?
3: जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बात करी थी कि बैरिएट्रिक सर्जरी 99.9% या 100% लैप्रोस्कोपिकली ही होती है, या रोबोटिक, लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक, और ये दोनों ही मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे कट दिए जाते हैं, 10 mm, 5 mm, आप मानिए 1 cm के और आधे सेंटीमीटर के कट होते हैं जो ना के बराबर दिखाई देते हैं, यही इसकी एडवांटेज है। और इन छोटे छोटे कट से हम पोर्ट्स डालते हैं, उससे ही हमारे जो इंस्ट्रूमेंट से पतले पतले वो अंदर जाते हैं और उसके थ्रू सारा ऑपरेशन किया जाता है। इस सब का फायदा यह है कि मरीज की पोस्ट ऑप में रिकवरी बहुत फास्ट है, दर्द का एहसास बहुत कम होता है मरीज को, वो बहुत जल्दी खड़ा होकर चलना फिरना अपने सारे कामकाज कर सकता है, और लुक्स वाइज भी, क्योंकि ये स्कार ना के बराबर दिखाई देते हैं, तो ये सब इस कप की एडवांटेज है बजाय की ओपन सर्जरी की।
2: तो मैं इसमें एक कमेंट ऐड करूंगा, जैसे पहले के

0: हमारे में क्या होता था कि हम ये सुनते थे जब हम मेडिकल स्कूल में थे कि बिग सर्जन्स मेक बिग इंसिजन्स, तो हमारे बड़े बड़े जो सर्जन्स थे कि ये बड़ी अच्छी सर्जरी करते हैं, बड़े चीरे लगाते हैं, वो सर्जन्स का पर्सपेक्टिव था। अब अगर हम पेशेंट पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो ये जो पेशेंट्स पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, इसी की वजह से यह लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का इजाद हुआ है कि हम पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि सर्जन की कंफर्ट नहीं है, पेशेंट की कंफर्ट है। जैसे डॉक्टर निखिल ने कहा कि अब वो मरीज जो है वो 4-6 घंटे बाद अपने पैरों पर खड़े होकर चल सकता है, जिस मरीज की सर्जरी 4 घंटे पहले, सर्जरी तो बड़ी है बट मरीज के लिए वो छोटी है क्योंकि उसकी दूरबीन पद्धति द्वारा सर्जरी हुई है।
1: जी जी, इसके फायदे हैं। और देखिए एक मैसेज और आया है हमारे पास, इन्होंने लिखा है कि गुड आफ्टरनून प्रकाश फ्रॉम दिल्ली। इन्होंने लिखा है कि मेरा बेटा जो है उसका वेट 150 kg है और 30 ईयर्स उसकी एज है, वो सब कुछ करता है, डाइट भी एक्सरसाइज भी, पर उसका वेट कम नहीं हो रहा है, तो प्लीज मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए और कुछ और सर्जरी करा के, अगर हम ये सर्जरी कराते हैं तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे क्या? तो साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या, इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं सर?
2: देखिए, जैसे इन्होंने बताया अपने बेटे के वजन के बारे में, लेकिन क्योंकि इन्होंने हाइट नहीं बताई है तो हम BMI तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि 150 किलो तो बहुत ज्यादा है और हर लिहाज से इसका बच्चे का जो BMI है वो 45 से ऊपर ही आएगा मेरे हिसाब से। और जैसा बताया कि वो खाने पीने का परहेज और एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ ट्राई कर चुका है लेकिन तब भी इच्छा मुताबिक वो वेट लॉस नहीं अचीव कर पा रहा है, तो जितना इस हिस्ट्री से जो पता लग रहा है कि यस, वेट लॉस सर्जरी या बेरियाट्रिक सर्जरी, मेटाबॉलिक सर्जरी जरूर इसकी मदद करेगी, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने साइड इफेक्ट्स की बात करी, तो देखिए साइड इफेक्ट में कहूंगा किसी भी दवाई के या किसी भी ऑपरेशन, कोई भी ऐसा ऑपरेशन या दवाई नहीं है जिसके साथ साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन ये जरूर है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, किसी भी ऑपरेशन से पहले, इवन मेटाबॉलिक सर्जरी से पहले भी हम सब तरह की सावधानियां बरतते हैं। इस तरह के मरीजों का बहुत ज्यादा चेकअप किया जाता है ऑपरेशन के पहले, क्योंकि जैसे हमने बात करी थी इनके पूरे सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो इनके हार्ट का, लंग का, शुगर स्टेटस, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें ऑपरेशन के पहले चेक की जाती हैं, सारी सावधानियां बरती जाती हैं जिससे कि ऑपरेशन के समय और ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन कम से कम रहें। इसीलिए इन मरीजों को बहुत जल्दी हम, जैसे बात की थी, खड़ा कर देते हैं 4-6 घंटे में ही, जिससे कि ऑपरेशन के बाद जो कुछ मरीजों को निमोनिया हो जाता है लंबे समय तक लेटे रहने से या खून के क्लॉट जम जाते हैं, उन सबको रोकने के लिए ही इन सब मरीजों को जल्दी खड़ा किया जाता है, जल्दी खाना पीना शुरू किया जाता है। आज की डेट में मैं कहूंगा ये सर्जरी इतनी सेफ हो गई है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट किसी भी और ऑपरेशन से, चाहे वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो या हर्निया का ऑपरेशन हो और चाहे वो मेटाबॉलिक सर्जरी हो, इनकी कॉम्प्लिकेशन रेट ऑलमोस्ट बराबर हो गई है।
1: यहाँ पर हम अपने एक श्रोता को फोन लाइन पर जो वेट कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
3: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार, बताइए।
3: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
2: नमस्कार
3: जी, मेरा नाम संजीव कुमार है और मेरी एज 44 ईयर्स है, 44 साल सर। और मेरा मतलब वजन पीछे था अभी कुछ दिन पहले 102 किलोग्राम था सर, और हाइट है मेरी 5 फुट 10 इंच या 11 इंच। तो सर मेरा पेट बहुत निकलो है और मेरे भाई का भी पेट बहुत निकलो है, जबकि खाने का तो 3 टाइम की रोटी भी मिलती है सही हिसाब से हमें। तो अब इस बड़े हुए पेट को कैसे कम किया जाए सर, प्लीज ये बताइए।
1: वेट को कैसे कम करें, इन्होंने बताया 102 किलो इनका।
0: देखिए जैसे आपने बताया तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, जैसे आपने कहा कि आपकी हाइट 5, 10 या 11 है, इसका मतलब है आप 175 सेंटीमीटर आपकी हाइट नाप लें, तो एक सिंपल कैलकुलेशन होता है कि हम आइडियल वेट कितना माने, तो उसमें से अगर हम 100 घटा दें, जो हमारी हाइट है उसमें से अगर हम 100 घटा देते हैं तो हमारी जो हाइट है उसके लिए जो हमारा वेट है उसकी अपर लिमिट आ जाती है। तो अगर 175 आपकी माने तो आपका 75 किलो वजन होना चाहिए, यानी आप 25 से 30 किलो अपने वजन से ऊपर हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हम BMI कैलकुलेट करेंगे तो आपका BMI जो है वो Grade 2 level ओबेसिटी में आएगा, तो Grade 3 ओबेसिटी जहां आपको किसी तरीके की सर्जिकल हेल्प चाहिए, आप उस कैटेगरी में अभी नहीं फॉल करते हैं ऐसा लगता है, जब तक हम पूरे टेस्ट नहीं करेंगे हमें नहीं मालूम पड़ेगा एग्जैक्ट। बट अगर आप Class 2 ओबेसिटी में है तो ये आपके लिए अभी आँख खुलनी चाहिए, है ना, कि जब आँख खुली तब सवेरा है। अगर आप अभी नहीं जागेंगे तो आप धीरे धीरे करके वो कब Class 3 ओबेसिटी में आ जाएंगे आपको नहीं मालूम, तो आपको एक एडवाइस लेना चाहिए या तो फिजिशियन से लेना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ इसमें बीमारियां हैं, जैसे डॉक्टर निखिल ने बोला ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, नींद की बीमारी, थायराइड की बीमारी, जोड़ों की बीमारी या गुर्दे की बीमारियां, तो इन सब बीमारियों के साथ अगर आप वजन ज़्यादा लेके चल रहे हैं तो आपको एक फिजिशियन को दिखाना चाहिए। अगर फिजिशियन आपको एडवाइस करता है कि नहीं आपको एक सर्जिकल एडवाइस भी लेना चाहिए, तो आपको एक जो बेरियाट्रिक सर्जन्स होते हैं, मेटाबॉलिक सर्जन्स होते हैं, उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए, वो

0: आपकी मदद कर पाएंगे कि किस तरीके से क्या तरीका आपके लिए बेहतर है आपको वजन कम करने का।
1: जी, जोया हमें लिख रही हैं, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे कार्यक्रम सुन रही हैं, और ये लिख रही हैं कि क्या मैदा, जैसे हमें पता है, इन्होंने लिखा है, मैदा इज वेरी नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड स्टमक, बट वी ईट आउटसाइड फूड एंड इन मोस्ट ऑफ द फूड मैदा एंड सारडो इज यूज्ड, हाउ डज इट इम्पैक्ट आवर हेल्थ एंड कैन वी गो फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी?
2: देखिए, एक तो जोया जी ने अपना वेट और हाइट मेंशन नहीं
1: जी,
2: करी
1: जी.
2: है, तो अभी हम ये नहीं बता पाएंगे,
1: इन्फॉर्मेशन ही चाहिए उनको।
2: अच्छा, जो बात करी इन्होंने मैदा किया इस तरह की, तो ये मैं जरूर कहूंगा कि खाना जितना प्रोसेस्ड हम जितना करते हैं, यानी कि वी आर मेकिंग इट मोर एंड मोर सिंथेटिक, उसमें नेचुरल कम हो रहा है और सिंथेटिक को ज्यादा होता जा रहा है, तो उतना ही खराब होता जा रहा है, उससे न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता जा रहा है और जो हार्मफुल एलिमेंट्स उसमें ऐड हो रहे हैं, इसीलिए मैदा को जो है सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता। तो जब जोया जी को ये सारी बातें पता भी हैं, तो ज़रूर इनको अपने खाने पीने में मैदा की मात्रा कम रखनी चाहिए, और आटा का मात्रा है जो हम जिसको हम नेचुरल खाना अपना कहते हैं वो लें, और एक्सरसाइज, योगा, किसी भी फॉर्म में जो है
1: जी,
2: वो इनको अपना वेट मेंटेन करने में मदद करेगा।
1: जी, क्योंकि हम कार्यक्रम ओबेसिटी भी कर रहे हैं, तो हमारे श्रोता ये भी जानना चाह रहे हैं कि खान पान में क्या सही है क्या गलत, और ये हमें लिखकर भेजा है हमारे रेगुलर लिसनर है नरदेव सिंह चौहान जी, कोटद्वार उत्तराखंड में रहते हैं। इन्होंने लिखा, शालिनी मैम, डॉक्टर निखिल और डॉक्टर खेतान को गुड आफ्टरनून। मैम, मोटापे की बात कर रहे हैं, पहले का खान पान और आज के खान पान, उसका जो फर्क हुआ है उसके कारण भी मोटापा बढ़ रहा है क्या? तो हम इस पे भी बात कर लें थोड़ी सी, वैसे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास कि मोटापा बढ़ क्यों रहा है, क्या खान पान मेजर रोल प्ले कर रहा है?
0: देखिए, इसमें खान पान और हमारा लाइफस्टाइल दोनों चीज ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। खान पान जो पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि खान पान पहले हमारा नेचुरल खाना ज्यादा था, है ना, अभी हमारा जैसे डॉक्टर निखिल ने कहा कि प्रोसेस्ड फूड ज्यादा है और अवेलेबिलिटी है। पहले हमारे खान पान के लिए हमें जाना पड़ता था, अब मैं घर बैठे और मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फूड के प्लेटफॉर्म पे घर बैठे खाना मंगा लेता हूँ, तो मेरे लिए इजी एक्सेस ऑफ फूड हो गई, तो एबंडेंस ऑफ फूड भी हो गया, इजी एक्सेस ऑफ फूड भी हो गया और प्रोसेस्ड फूड भी हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी फूड की तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही हैं वजन में। जैसे पहले के ज़माने में हम ये मैदा, सूजी, ये सब चीज़ें कम होती थी, आटा, चावल, ये खाना, सब्जी, तीन तरीके की सब्जियां, रोटी, चावल, हमारी प्लेट रेनबो जैसी कलरफुल दिखती थी। अब हमारी प्लेट जो है वो सिंगल कलर की होती है, तो अगर रेनबो जैसी प्लेट दिखेगी हमारी तो वो न्यूट्रिशियस खाना है, अगर हमारे खाने में एक या दो कलर की चीज़ें दिख रही हैं वो हमारा न्यूट्रिशियस नहीं है। जैसे वाइट्स जो होते हैं ना, हमें वाइट्स जो भी खाने में चीज़ें, सूजी, मैटा, आदा, चावल, या हम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वो बहुत सारे ठीक है, हेल्थ के लिए एवरेज चीज़ें हैं, बट वो न्यूट्रिशंस नहीं है इतने। तो न्यूट्रिशंस चीज़ें जितनी कलरफुल होंगी उतनी न्यूट्रिशन, सबकी अपनी डिफरेंट न्यूट्रिशंस वैल्यू है, अगर हम वो कलर्ड फूड खा रहे हैं तो, अगर हम वाइट फूड खा रहे हैं तो उनकी सबकी मोर और लेस कॉमन न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, पहले इनसे बात करते हैं, फिर और कुछ बातें हैं आपसे इससे संबंधित पूछने की। हेलो,
3: हेलो
1: जी, जी आप रेडियो डॉक्टर में हैं, नाम बताएं।
3: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार,
3: मेरा नाम अमन कुमार है सर, मैं गांव कुकरी चाची इंदिरा बनाल से हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
1: जी बताएं, क्या पूछना है आपको?
3: मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोटापे कम करने के लिए कौन सा योगा या प्राणायाम सबसे लाभदायक है?
1: देखिए, आज हम योगा या प्राणायाम पे तो बात नहीं कर रहे हैं, ये जरूर कह रहे हैं कि हाँ, ये भी वेट लॉस कर सकते हैं अगर आप इसको नियमित दिनचर्या में शामिल करते हैं, एक्सरसाइज को या योग को, पर यहाँ पर हम बात आज बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में कर रहे हैं और ये सर्जरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है इस पर कर रहे हैं। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसे अब वेट लॉस की जब हम बात कर रहे हैं, हम खान पान की बात कर रहे हैं, तो क्या जब ये सर्जरी हो जाती है उसके बाद भी खान पान पे ध्यान रखना पड़ता है? जैसे कुछ लोग इस तरह की थिंकिंग से आते हैं कि वेट लॉस हो गया, अब तो सर्जरी हो गई, अब हम कुछ भी खा सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
2: देखिए, ज़रूर, जैसा हम पिछले आधे एक घंटे से बात करते हुए आ रहे हैं कि वज़न कम करने के लिए जो मुख्य हमारा फोकस होना चाहिए वो तो खाने पीने की आदतों पर और एक्सरसाइज पे ही होना चाहिए। बैरियाट्रिक सर्जरी हम उसी मरीज को ऑफर कर रहे हैं जो ये सब ट्राई करके भी एडिक्वेट वेट लॉस अचीव नहीं कर पा रहा और साथ में वो मोटापे की वजह से और बहुत बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। इस सर्जरी से हम उसका वजन एक बार आइडियल कैटेगरी में ले आते हैं जितना उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन अब उसको मेंटेन करने के लिए वही दो चीजें जिसकी हमने शुरू में बात करी थी, यानी कि खाने पीने की आदत और एक्सरसाइज, यानी कि वो तो करनी ही करनी है। अगर कोई भी मरीज सोचे कि सर्जरी शॉर्टकट है कि मैं खाने पीने में परहेज नहीं कर सकता, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं सर्जरी करा लेता हूँ और बाकी मैं ऐसे

0: करता रहूंगा। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि नहीं, मरीज का मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना वेट लॉस को मेंटेन रखने के लिए, दोबारा कह रहा हूं मैं, डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज,
1: यानी ये सर्जरी एक बार हो गई, अगर
0: सर्जरी उनका
1: आपने
0: रिप्लेसमेंट नहीं है।
1: फॉलो नहीं किया तो
0: बिल्कुल
1: आप वापस वेट गेन कर
0: बिल्कुल
1: सकते हैं।
0: बिल्कुल, इनफैक्ट वेट रीगेन जो होता है ऑपरेशन के बाद, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद, वो मुख्य इन्हीं वजहों से होता है कि मरीज मोटिवेटेड नहीं होता, खाने पीने की आदत में बदलाव नहीं कर पाता, एक्सरसाइज व्यायाम का शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाता, और यही मरीज जो है वो वेट रीगेन लेकर आते हैं।
1: तो डॉक्टर मुकुंद, मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि फॉलो अप का क्या महत्व है, कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा दोबारा से वेट गेन हो सकता है, तो कितना फ्रीक्वेंटली उन्हें डॉक्टर से इन टच रहना पड़ता है?
2: देखिए, जैसे हम डाइट की बात कर रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, तो कुछ डेफिनेटली डाइट प्लान होता है हमारा, और उस डाइट प्लान और आपकी आगे की जर्नी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप और मैं मिलकर, आपकी या मेरी एक्सपेक्टेशन अलग नहीं है, तो वो एक्सपेक्टेशन हमारी खरी उतरे उसके लिए हमें रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। जैसे किसी भी ऑपरेशन के बाद हम 7 से 10 दिन के अंदर मरीज को पहले फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, देखने के लिए कि उनकी हेल्थ सेहत सही है कि नहीं। उस वक्त हमारा टारगेट वेट लॉस नहीं होता कि कितना वेट हुआ, फिर हम पहले महीने पर बुलाते हैं, फिर पहले 1 साल हम उसको 3-3 महीने के अंतराल पर बुलाते हैं। कुछ जांचें होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपको कुछ बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं तो उन बीमारियों से रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ रेगुलर टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि आप में कोई न्यूट्रिशनल की कमी तो नहीं हो रही या प्रोटीन्स की कमी तो नहीं हो रही, उनके लिए कुछ टेस्ट कराते हैं, और एक फिजिकल चेकअप होता है, और साथ में आपका कॉम्प्लायंस, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेशेंट कॉम्प्लायंस जरूरी है। अगर आप अपनी डाइट एक्सरसाइज या सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अदर साइड ऑफ कोर्ट में चले गए। आपको वेट लॉस तो मिलेगा बट डिजायरेबल नहीं मिलेगा, जितना आप चाहते हैं उतना भी नहीं मिलेगा, और वो सस्टेन भी नहीं रहेगा, यानी लॉन्ग टर्म जो हमारा वेट लॉस मेंटेनेंस था वो भी हमारा हो सकता है पूरा ना रहे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि पहले 5 साल हमें एनिवर्सरी जैसे मनानी चाहिए पेशेंट को फर्स्ट ईयर के बाद, कि एटलीस्ट साल में एक बार जो अपने डॉक्टर हैं उनको हम कंसल्ट करें, उनसे एडवाइस लें और समझें कि हमारी जो जर्नी है वो ठीक चल रही है कि नहीं, हम वेट रीगेन की साइड तो नहीं है। कई बार कुछ मरीज हैं जिनको न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी हो जाती है, वो अदर साइड ऑफ कोर्ट में चले जाते हैं कि हम चाह रहे थे 40 किलो वजन कम हो, वजन तो 40 किलो कम हो गया बट न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज हो गई जिनकी वजह से वो कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो उन सबको भी मेडिकल एडवाइस या मेडिकल केयर की जरूरत होती है, तो उनको भी फॉलोअप जरूरी होता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बहुत बेसिक प्रश्न है, अभी तक हमने बात नहीं की है, कि आपके पास लोग आते होंगे और बोलते होंगे रैंडमली कि मुझे इतना कम करना है या उतना कम करना है, एक्चुअली कितना कम किया जाता है, इसका भी कोई कैलकुलेशन होता है क्या?
0: ये देखा जाता है, इसके लिए जो टर्म है वो है एक्सेसिव वेट, या कितना वेट उसका ज्यादा है उसके आइडल वेट से, और फिर हम टारगेट करते हैं कि उसका कितना वेट लॉस हम चाह रहे हैं उसका। हम कहते हैं अगर 75% ऑफ द एक्सेसिव वेट अगर वो पेशेंट लूज कर ले तो कहते हैं कि उसने एडिक्वेट वेट लॉस अचीव कर लिया है। अब उसके लिए डिपेंड करता है कि फिर कितना वो हमारा टारगेट कितना आ रहा है, पेशेंट को 20 किलो लूज करना है या 40 किलो करना है या 50 किलो करना है, वो डिसाइड करता है हम कौन सी सर्जरी के लिए जा रहे हैं। जैसा बाईपास सर्जरी की हम बात कर रहे थे, अगर मरीज को जितना ज़्यादा वेट लूज करना है तो उसका बाईपास उतना ही हमको बड़ा करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, इसीलिए जैसे हम टीम की बात कर रहे थे कि होलिस्टिक अप्रोच, पेशेंट के साथ बैठकर बात की जाती है कि आपका वेट इतना होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, और है ये इतना, इतना वेट हम लूज करना चाह रहे हैं, और उसके लिए ये हमारे पास ऑप्शंस हैं।
1: जी, यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज हमने काफी सारी बात की है बैरियाट्रिक सर्जरी प्रोस एंड कॉन्स पर। अभी भी बहुत सारी बातें मन में हैं, क्वेश्चंस हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर मुकुंद, कि अगर सर्जरी हो जाती है उसके बाद भी आपने कहा है कि ये खतरा रहता है कि वेट रीगेन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट क्या कर सकता है?
1: देखिए, जैसे हमने कहा तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि वेट रीगेन का कारण क्या है। तो ये एक दो पहिए की साइकिल है। हमारा जो सर्जरी हमने कर दी वो एक पहिया है कि वो ऑपरेशन हो गया और आपको एक डिज़ायरेबल वेट, यानी जो हमें एक वेट चाहिए था, एक्सेस वेट का जो एक परसेंटेज वेट लॉस है वो हमें मिल गया। अब हमें दूसरे पहिया अपना चलाना है। तो साइकिल का जब दूसरा पहिया चलेगा मतलब आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो ये एक इजी वे आउट नहीं है कि हम कहें कि मैंने सर्जरी करा ली और मेरा वेट लॉस हो गया, अब मैं वेट मेंटेन होता रहेगा और मैं कुछ भी खाता पीता रहूं। तो आपके अपने लाइफस्टाइल को, थोड़ा एक दैनिक दिनचर्या को, चाहे वो खान पीन का हो चाहे हमारी एक्सरसाइज का हो, बनाना पड़ेगा। अगर हमें एक्सेसिव वेट लॉस होता है, वेट गेन होता है, तो उसके लिए ही जो फॉलोअप, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम रेगुलर फॉलोअप में होते हैं तो हम उसके कारण को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं और जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए आप किसी कारणवश आप अब रेगुलर फॉलोअप में नहीं रहे और आप 5 साल बाद अब आप देखते हो कि आपका 50 किलो वजन की कम हुआ था और अब 25-30 किलो वजन बढ़ गया है, तो डेफिनेटली यू अगेन हैव टू गो टू दी कंसर्न सर्जन जिससे आपने ऑपरेट कराया है। और वो आपको सिर्फ, ऐसा नहीं है कि वेट रीगेन के बाद भी सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन होती है। आज की तारीख में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा मेडिसिंस भी हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं। तो जैसे हमने पहले भी शुरुआत में डिस्कस करा था कि होलिस्टिक अप्रोच लेकर के भी हम ये वेट लॉस को दोबारा अटेन कर सकते हैं।
0: जी, लाइफस्टाइल तो बहुत बड़ा आपने बताया, रीजन खान पान बताया, लेकिन बच्चे आजकल बहुत ओवरवेट हो रहे हैं, तो डॉक्टर निखिल ये बताइए कि क्या सिर्फ खान पान लाइफस्टाइल ही इसके लिए दोषी हम माने, या कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं?
2: नहीं, बिल्कुल, खाने पीने के अलावा आजकल स्टडीज में ये देखा गया है कि काफ़ी सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। और इसीलिए हम देखें कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में, मतलब इवन 5 साल

0: छह साल 10 साल 12 साल के बच्चों में भी बहुत ज्यादा ये बीमारी पाई जा रही है। इसमें एक वजह ये जरूर है जैसे बात की थी हमने खाने पीने के बारे में, प्रोसेस्ड फूड, मैदा, जंक फूड, ये सब इसका भी मात्रा इस्तेमाल बढ़ रहा है, एक्सरसाइज करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, लेकिन जेनेटिक्स भी अपना रोल प्ले कर रही है। इसलिए हमने देखा है कि ये पूरा का पूरा खानदान, पूरी फैमिली में ही, पिता भी, दादा भी और बेटा बेटी भी, सबके सब इससे ग्रसित हैं।
1: जी बिल्कुल। तो अब इतना ही समय है कि मैं अपने धन्यवाद दूं अपने आज के गेस्ट को और आपको बता दूं कि आज हमने ढेर सारी बातें की बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में। हमारे साथ रहे डॉक्टर निखिल गुप्ता, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, एसोसिएट डीन अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड आरएमएल हॉस्पिटल, डॉक्टर मुकुंद खेतान, को चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एक्सेस बेरियाट्रिक सर्जरी सर गंगाराम हॉस्पिटल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों यहां आए समय निकालकर इस विषय पर ढेर सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

डीडी भारती, डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री होरां दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, FM 102.7 मेगाहर्ट्स, DTH दी AIR पंजाब सेवा, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती, FM 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर, FM 100.9 मेगाहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी बठिंडा, आकाशवाणी पटियाला, विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर का मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात की 135वीं कड़ी।

गांव वालों बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। मकसम सुनते रहिए 102.7 एफएम।

0: वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो युवाणी ओनली ऑन 102.7 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी जलंधर ते। दोस्तों अज दा जिहड़ा खास सैगमेंट है साडा यंगिस्तान, जिहदे विच तुसी इंजॉय करोगे आर जे भूमिका दे नाल होई गलबात एक सिंगर दे नाल, ते तुसी जाणोगे कि म्यूजिक दे जिहड़े भी रूल्स हुंदे आ एक आवाज़ नूं किदां आपां प्रॉपर मेनटेन करके रख सकते हैं, कि एक सोहनी जी आवाज़ किदां दी हुंदी है ते उहनूं मेनटेन करन लई किन्नी कु मेहनत लगती है। तो आओ सुनते हैं आर जे भूमिका दे नाल होई गलबात सिंगर प्रणव दे नाल।
1: रब दी बनाई इस कायनात च सत अंक दा एक वखरा महत्व है।

0: क्या बात है, इस गीत तो जदों तुहाडा सफर अगे वध्या तां अज तुसीं इस मुकाम ते हो। पर अजकल ऑटो ट्यून वाले डिजिटल दौर च एक नौजवान गायक वजों अपनी आवाज की असल मिठास ते सादगी नूं बचा के रखना किन्ना वड्डा चैलेंज है तुहाडे लई।
1: सो आई थिंक रियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे ख्याल में, क्योंकि आपां एक जो स्टूडियो के रिकॉर्ड करते हैं आपां उदों ते ऑटो ट्यून का यूज कर सकते हैं, बट जो कल आपां लाइव शोज से परफॉर्म करना, लाइव स्टेजिस से जाना, तो उदों उत्थे ऑटो ट्यून वर्क नहीं करता। आई थिंक उत्थे साडी रियल जो जिहड़ी वोकल है ना, वही कैप्चर होंदी है
0: जी।

0: कमाल है, ये तो हो गया बॉलीवुड गीत। तो तुसी खुद का कोई ट्रैक भी लिखा ओरिजिनल जा गाया भी है?
1: जी मैं लिखा सीगा बट उन्हें मैं किसी कारण पब्लिश नहीं करवा पाया क्योंकि ये नाल ही जुड़िया हुआ। मैं तुम्हें एक किस्सा दसदा, मैंने अपने कॉलेज टाइम से एक ऑफर आया सीगा किसी सोंग लिए, किसी सोंग में गाना सीगा ते उदे च मैं अपनी आवाज़ भी दी, सारा कुछ हो गया बट एट लास्ट उन्होंने मैंने दसिया कि ये जो आप किसी पेज पर किसी फेमस पेज पर इन्हें पोस्ट करवाना उनके चार्जिज लगन गए, उनके इन्ने चार्जिज है, वो प्रमोशन लिए इन्ने चार्जिज है, स्पॉन्सरशिप लिए इन्ने चार्जिज है। तो मेरा बहुत ज़्यादा उत्थे दिल टुट गया से क्योंकि मेरे को इन्नी इनवैसमेंट तो सी नहीं कि जी मैं उत्थे लगा पावा, तो फिर वो उन्होंने मैं ड्रॉप करना पै गया उस प्लैन में।
0: तो उस समय तो तुम ये प्लैन ड्रॉप करता, पर अगले पाँच साल खुद को कितने वेख दो इस फील्ड के?
1: मेरा हजे फिलहाल तो कोई प्लैन नहीं है कि मेरा अपना सोंग करन दा, बट हाँ मैं सोच रहा कि इनू अपने नाल नाल एज ए हॉबी भी कंटिन्यू रखा, तो जदों मैं कोई अच्छा मौका मिलेगा मैं जरूर करांगा इनू अगे कंटिन्यू, तो हजे फिलहाल लई मेरा कोई प्लैन नहीं है। तो अगले पाँच साल मैं सोचदा कि मेरे नाल कुछ इदा की ऑडियंस हो जी सिर्फ मैनू ही सुनना चाहती हो।
0: डिजिटल दौर है, डिजिटल जमाना है, तो अज के जमाने AI काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो कई लोग कई संगीतकार AI तो संगीत बना रहे हैं, तो कई AI तो गवा रहे हैं। कि तुहानू भी लगता है कि AI आने वाले समय से तुहाडे सामने चुनौतियां खड़ी करेगा?
1: सो जिथे तक गल रही AI की, देखो आप AI दे नाल कोई भी म्यूजिक बना सकते हैं, किसी भी परसन की आवाज़ चाहे बना सकते हैं, बट मैं लगता है कि ना कि फील मिस रहेगी, वो सोल मिसिंग रहेगी, आप उस फील नू नहीं लिया सकते, वो म्यूजिक दे विच इमोशनस नू नहीं लिया सकते। सो आई डोंट थिंक कि AI इन्ना ज़्यादा हैल्पफुल है इस फील्ड दे विच, इस इंडस्ट्री दे विच।
0: ते प्रणव तुसी केड़े केड़े जोनर च गाना गाना पसंद करदे हो? जिवें असी अरजीत सिंह दी आवाज़ च तुहाडे मूहों बॉलीवुड सॉन्ग तो सुनिया, ते इस तो अलावा तुसी केड़ा जोनर पसंद करते हो?
1: जी मैनू पंजाबी म्यूजिक बहुत पसंद है, मैं गांदा भी हाँ ते सुनदा भी बहुत ज़्यादा पंजाबी म्यूजिक।
0: जी ते मैनू लगदा साडे लिसनर लई एक सॉन्ग ते बनदा है।

प्रोग्राम लव यू जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। शाम के बज गए ने छे ते तुहाडी आ जे दोस्त सुरभि आ गई है जी लैके वो प्रोग्राम जो बहुत खास है। ये प्रोग्राम पॉजिटिविटी ना भरया होया, इंस्पिरेशन ना भरया होया, नैगेटिविटी नू दूर करन दे लई इस प्रोग्राम नू खास तुहाडे लई पेश किया जाता है। सो इसी प्रोग्राम विच एक बड़ी खास गल मैनू याद आई अज, वो गल है वैल्यू दी। अक्सर असी शिकायत करते हैं जिंदगी विच कीमत दी, यानी कि साड़ी कीमत दी, कि किसी दी जिंदगी विच साड़ी कीमत की है। आप ये चीज़ बहुत सोचते हैं और सब तो ज़्यादा फिर आप हर्ट उदो होंगे जो सानू ये पता चलता है कि जिस इंसान दे नाल असी जुड़े हुए हैं, जिस इंसान आप अपनी जिंदगी समझते हैं, उन्हें बड़ा खास हिस्सा समझते हैं, उसकी जिंदगी दे विच तां साडा कोई खास हिस्सा है ही नहीं है। इस सब चीज़ां उदों दुख दिंदियां ने, बट इत्थे असी डीमोटिवेट नहीं होना, इत्थे असी मोटिवेट होना है। क्योंकि कई बार कुछ लोग सानू ये दस देंदे ने कि हैसियत जिहड़ी ना साडी जिंदगी विच साडी सब तो ज़्यादा होनी चाहिए है, ना कि किसी होर दी जिंदगी विच। सो ये विषय बहुत खास है। इहो अहसास है जदों सानू ये लगता है कि असी किसी दी जिंदगी विच हाँ हाँ तो सही हाँ, पर साडी अहमियत शायद नहीं है। सो कई बार कुछ रिश्ते अजिहे हुंदे हन जिथे असीं हर वेले सामने वाले लई मौजूद रहने हैं, पर जो सानू उन्हां दी लोड़ हुंदी है ना वो कितें नज़र नहीं आते। दो लाइना इस ते कहना चाहूँगी कि कुछ लोग साड़ी जिंदगी का हिस्सा तो बन जाते हैं, पर उन्हां दी जिंदगी दी कहानी भी साडा किरदार बहुत छोटा होंदा है। सो दोस्तों, अहमियत मंगी नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। जे किसी नूं तुहाडे नाल गल करन दा समां सिर्फ उदों मिले जदों इकला होवे, जे तुहाडियां भावनावां तो वध उस दियां तरजीहां होण, तां शायद तुसीं उसदी जिंदगी विच तां हो पर पहल नहीं हो। पर इस गल दा मतलब ये नहीं है कि तुहाडी कीमत घट है। याद रखो, किसी दी नज़र विच अपनी कीमत नूं ना तोलो, क्योंकि हीरे दी पछाण हर किसी नूं नहीं हुंदी। असीं अक्सर उन्हां लोकां पिछे भजदे रहिंदे हां जो सानू नज़रअंदाज़ करदे हन, ते उन्हां नूं भुल जांदे हां जो साडी मुस्कराहट लई दुआ करदे हन। इस करके दोस्तों, साडी जिंदगी विच साडी अहमियत बहुत ज़्यादा होनी चाहीदी है। आपां कदी इह ना सोचिए कि साडे च 100 कमियां ने ते असीं किसे दे लायक नहीं हां। लायक दी गल नहीं इत्थे आउंदी, इत्थे गल आउंदी है कि असीं अपनी नज़रां दे विच किन्ने क लायक हाँ, आपां किन्ना क खड़े हाँ, ते आपां अपनी जिंदगी विच अपनी ही किन्नी वैल्यू करदे हाँ जो सानू कई बार पता ही नहीं चलदी। इस करके अपनी जिंदगी नूं इन्ना भी ज़्यादा नैगेटिविटी विच ना लेके जाओ कि तुहानू इंज लगन लग जाए कि बस दूसरिया दे अकॉर्डिंग ही तुहाडी जिंदगी सी, उस तों अलावा कुछ सी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे ने जो अपनी जिंदगी का फैसला इस करके बदल लेंदे ने क्योंकि उन्होंने लोगों की परवाह होंदी है। सर, लोगों का की है, यह समाए तो बदल जाते हैं, ये गल गल तो बदल जाते हैं, इन्हों का कुछ नहीं है, इन्हों का कुछ जाना भी नहीं है, जाएगा तो कि साडा जाएगा, क्योंकि असी इन बारे ज़्यादा सोच लिया तो असी यह सोच लिया कि यार वो मेरे बारे की सोचेंगे। इस करके तुहाडी किस्मत तुहाडे हाथ हुंदी है, तो अपनी कीमत नूं किसी भी तरीके दे नाल कदी भी ना कट्टन दिओ। प्रोग्राम लव यू जिंदगी इसी तरीके नाल चलता रहेगा। मैं हाँ जी तुहाडे यार जे दोस्त सुरभि, इंजॉय करते रहो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, पॉजिटिविटी दे नाल भरिया होया। लो जी, एक गीत पेश करन जा रही हूँ।

डीडी न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा। प्रधानमंत्री होरां दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, FM 102.7 मेगाहर्ट्स, DTH दी AIR पंजाब सेवा, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती, FM 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर, FM 100.9 मेगाहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी बठिंडा, आकाशवाणी पटियाला, विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे। इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण कीता जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 135वीं कड़ी।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी लव यू ज़िंदगी। लव यू ज़िंदगी नाम दे विच बहुत कुछ खास है, यानी कि अपनी ज़िंदगी नू प्यार करो। बट की असीं अपनी ज़िंदगी नू इन्ना प्यार सच्ची दे विच कर पाते हैं? शायद नहीं। देखो दोस्तों, गल मैं अज कर रही सी वैल्यू दी कि साड़ी ज़िंदगी विच बहुत सारे लोग ऐसे ने जिन्हां दी बहुत वैल्यू है, कि उन्हां दी ज़िंदगी दे विच वी साड़ी इन्नी क वैल्यू है, ये सानू कई बार नहीं पता हुंदा। पर जदों इस गल दा एहसास हुंदा ते साड़े बहुत हर्ट हुंदे आ। इस करके आपां दुखी हो जांदे आ क्योंकि असीं किसी तो बहुत ज़्यादा उम्मीदां लगा लैंदे आ, एक्सपैक्टेशंस जिहनूं कहा जांदा। जदों असीं किसी तो इन्नियां ज़्यादा एक्सपैक्टेशंस लगा दिंदे आ ना, तो उह बंदा साड़ी उम्मीद ते नहीं उतरदा, खड़ा उतरदा, फिर साड़ा दिल टुट जांदा। तां ही कहिंदे ने कि किसी दे जाण दा इन्ना बुरा नहीं लगदा जिंदगी चों, जिन्ना बुरा किसी दे नाल रह के लगदा है कि उहदे नाल जिंदगी विच रह के भी तुहाडी अहमियत जीरो है, तुहाडा कोई हक नहीं है। सो जिंदगी दा एक सबक भी है, एक बीज जदों मिट्टी दे विच दबिया जांदा है ना, तां उसनूं भी लगदा होवेगा कि उसनूं हनेरी विच सुट दित्ता गया। उह सोचदा होगा यार कि इत्थे तां कुछ भी नहीं है, पर उही बीज ना एक दिन दरख्त बन के छा दिंदा है। इसी तरह जिंदगी विच ना, जे अज कोई तुहाडी कदर नहीं कर रहा ना, तां इसदा मतलब यह नहीं है कि तुहाडी अहमियत नहीं है, शायद तुहाडा समां अजे आउणा बाकी है। इस करके खुद नूं इन्ना काबिल बना लो कि किसी की मंजूरी की लोड़ ही ना पवे। तुहाडी पछाण, तुहाडी मेहनत होवे, किसे दा साथ ने, ये तुहानूं खुद नूं देखना पएगा कि तुहाडी कीमत एक्चुअल भी तुहाडी लाइफ विच किन्नी है। सो अक्सर असीं अपनी अहमियत दूजे की नज़र नाल तोलन लग जांदे आ, अते ये ना मैनूं लगता 50-60% लोग ऐसे है भी ने जो दूसरे ते बहुत डिपेंड करते हैं। ओदी जिंदगी विच साडी अहमियत बहुत है। कुछ लोगों को वहम होंदा है, बट जदों मुसीबत आउंदी है ना, कहिंदे उदों ही पता चलता फिर अपनियां दा वी, उदो कौन सच्चा है ते कौन तुहाडे नाल है, ओह तुहाडे नाल उत्थे खड़ा हो जाएगा। पर जो तुहाडे नाल कदी सी ही नहीं, मतलब जो तुहाडे नाल रहा है तो रहा, बट तुहाडे नाल कदी सी ही नहीं, उहदे बारे तुहानूं कदी जिंदगी विच पता नहीं लगेगा। तो इस करके दोस्तों, अपनी जिंदगी विच अहमियत जिहड़ी है तुसीं खुद करनी है, और अपने आप नूं कदी वी इन्ना ज़्यादा कमज़ोर ना समझो कि तुसीं दूसरियां दीआं गल्लां दे विच आ के अपने आप नूं डीमोटिवेट कर दो, और ये सोचण लग जाओ कि तुहाडे विच तां बहुत सारी कमी है, और तुसीं हमेशा हसते रहो, मुस्कुराउंदे रहो, क्योंकि हसना जिंदगी विच बहुत ज़्यादा जरूरी है। इहदा मतलब ये नहीं है कि हुण तुसीं बिना गल ते हसण लग जाओ, नहीं नहीं, बिना गल तो नहीं हसना, हसना जरूर है, बट एक खुशी दे विच, मन की खुशी विच। मन की खुशी कदों होएगी? जदों तुसीं खुद नूं प्यार करोगे। प्रोग्राम लव यू जिंदगी इसी तरीके का चलता रहेगा, जिते मिठिया मिठिया गल्लां बातें चलदियां रहनगियां। नाल दी नाल असीं तुहानूं हुण वधिया जी कहानी भी सुनावांगे, इंस्पिरेशन स्टोरी। जाना कितें नहीं है, बने रहना साडे नाल। प्रोग्राम लव यू जिंदगी विच तुहाडी दोस्त आर जे सुरप्रीत नाल।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181

वेलकम बैक प्रोग्राम लव यू जिंदगी दे विच। मैं हाँ जी तुहाडी आ रही दोस्त सुरभी। वो प्रोग्राम जो तुहानू इंस्पायर करता है तुसी सब जानते हो। बस फिर देर किस गल दी है, तुहाडी दोस्त तुहानू एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही है जिसनू सुन के तुहाडे मन दे विच भी एक बार तो विचार आएगा ना कि यार असी क्यों हार मनी जी, बाई चांस तुसी कदी हार मनी होए तां। सो कहानी है ये पंजाब दे एक नौजवान दे, इन नौजवानों नू प्रेरित करने वाली एक साहब दी कहानी है। पंजाब दा जिला मानसा दे पिंड कोटला दे रहन वाले नौजवान जगदीप सिंह दी मैं गल करन जा रही हाँ। यो नौजवान जिसकी कहानी पूरे देश दे नौजवानों लई एक बेहद ही प्रेरणादायक मिसाल है। कहानी तो पहले ही मैं दस दिनी हाँ कि यह कहानी ना यह साबित करती है कि जे मन विच कुछ करन दा जज्बा होवे तां वड्डियां मुश्किलां भी तुहाडा राह नहीं रोक सकदियां। कहानी दी मैं शुरुआत करती हाँ। जगदीप सिंह दी गल करां तो एक बहुत ही साधारण अते गरीब किसान परिवार दे नाल संबंध रखता से। मतलब उहदे घर दे विच ओह सब सहूलतां नहीं सी जो आम घर दे विच हुंदियां ने। परिवार सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन सी अते कर्जे दा भारी बोझ सीगा। इस भारी बोझ दे विच जगदीप सिंह दे सुपने बहुत वड्डे सी। जगदीप सिंह बहुत कुछ करना चाहुंदा सी पर उहदे घर दे हालात कुछ होर बयान कर रहे सी। घर दे हालात इन्ने ज़्यादा खराब सन कि पढ़ाई दा खर्चा चुकना भी मुश्किल सी। पर जगदीप दा सुपना बहुत वड्डा सी। जे मैं सुपने दी गल करां तां जगदीप दा सुपना सी कि वो देश दी सब तो वधिया तकनीक

टेंशन ना लो, इसका के एंजॉय करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि जिंदगी बहुत सोहनी है। जिंदगी ने लव यू जिंदगी कहते रहो, खाओ पियो मौज करो, जिंदगी का मान मारो, अपनी सुरभि आज जे सुरभि नू हुण इजाजत हो दोस्तों। उम्मीद करती तुहानू अज दा प्रोग्राम वधिया लगा होएगा, ते बस फिर अज लई इन्ना ही जी। अगले आज पहुंच चुके ने अपना प्रोग्राम लैके, मैनू हुण इजाजत हो जी। तुहाडे सारे का बहुत बहुत धन्यवाद जी, रब राखा।

नमस्कार, एफएमएन 102.7 मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी जलंधर का रेनबो चैनल है। शाम के 7 बज रहे ने ते पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।

नमस्कार आदाब जुगियानु एफ एम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी चंडीगढ़ दा रेनबो चैनल ट्यूनिंग की तरह तो सी ते बने हुए अपनी दोस्त आरजे नेहा रल दे नाल ते मैं जी चेहरे ते मिठी मुस्कान दिल विच जोश प्यार ते दोवे हाथ जोड़ सारे ही स्रोतियां दा इस्तकबाल करते हाँ अज दे इस शाम इस फिल्मी महफिल दे विच फिल्मी दुनिया प्रोग्राम दे विच अज तुहानू फटाफट वेरवा दे दिंदे आ कि केड़े केड़े खास सैगमेंट्स तुहाडे वास्ते इस प्रोग्राम दे विच मैं लेके आई हाँ। दोस्तों सब तो पहला तो असी गलबात करांगे प्रोग्राम दे विच लेडी सुपरस्टार या फिर लेडी अमिताभ दे नाल नाल मशहूर एक खूबसूरत अदाकारा बारे। उस तो बाद गलबात करांगे टीवी दी एक हस्ती एक अजिही शख्सियत जिन्हां दी शुरुआत ते फिल्म तो हुई सी पर उस तो बाद ओ हसन ते हसान वाली राणी बन गई। इस तों बाद बहुत सारियां फिल्मां दे गॉसिप्स भी लैके आईआं कि फिल्मी दुनिया दे विच बॉलीवुड दे विच की कुछ चल रहा है कि अजकल वायरल न्यूज़ जिहड़ी है सुनन विच देखण विच आ रही है ते इस दे नाल ही नाल प्रोग्राम दे आखिर विच तुहानूं दसांगे लेटेस्ट फिल्मों बारे उन्होंने फिल्मों की भी गल करांगे जो कि बीते दिनों रिलीज़ हो चुकी हैं तो उन्होंने फिल्मों बारे भी गलबात करांगे जो कि इस हफ्ते रिलीज़ हो जा रही हैं। तो मैं कह जी प्रोग्राम बारे तो सारा कुछ दस दिता सारे ही फ्लेवर जो रख दते बट फ्लेवरस का जेकर मज़ा चखना है तो बने रहना पेगा प्रोग्राम फिल्मी दुनिया के। मैं कह जी गलबात की है एक खास अदाकारा दी जिसनु लेडी सुपर स्टार भी कहा जाता है। हुण देखो अगर आप एक्टर्स की गल करते तो एक्ट्रेस नु तां असीं अक्सर सुनते हैं सुपर स्टार ठीक, पर एक अदाकारा जिस दे नाम नाल टाइटल लगा है लेडी सुपर स्टार का तो इसनु लेडी अमिताभ भी कहा जाता है। ये शख्सियत कौन है तो इसके पिछे की कहानी है कि किस तरह उन्होंने नाम के नाल टाइटल लगे इस बारे जानेंगे पर पहला प्रोग्राम का आगाज एक मिठे जे गीत के नाल हो जाए तो मैं क्या जी मज़ा आ जाएगा। तो इस नाल ही बार जे मौसम की गल करिए भी बड़ा सोहना होया पिया है ठंडी ठंडी हवा चलती पी है तो मैं क्या जी ठंडी ठंडी हवा जब चलती है तो फिर चेते आते हैं किशोर कुमार ते आशा भोसले की आवाज़ गाया ये गीत

वास्ते, सुपरस्टार वास्ते। इन्ना ही इस तो बाद गलबात करेंगे एक होर अदाकारा बारे। अदाकारा दे नाल नाल कॉमेडी क्वीन भी जिक्र कहिए तो गलत नहीं होएगा। तो लो जी फिर प्रोग्राम दे विच अगला गीत लता मंगेशकर दी आवाज़ दे विच।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: हाँ?
0: कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: Welcome back. You are tuned into the program that is Northeast News with me, Suhasini. And of course, we have a lot many messages as well. We have another message from Shyam Sundar Sangli from Goa. And he says, can you please

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 28 जून 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालो नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नैशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री होरां दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स FM 102.7 मेगाहर्ट्स DTH दी AIR पंजाब सेवा DRM 864 किलोहर्ट्स FM 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती FM 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर FM 100.9 मेगाहर्ट्स FM 100.8 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 135वीं कड़ी।

बहुत सारी इनफॉरमेशन दा डोज मैगा जी अज प्रोग्राम इनफो टाइम्स दे विच गलबात करांगे इनफॉरमेशन जानकारी साझा करांगे क्योंकि कहिंदे जिहड़ी चीज असी जिन्नी ज़्यादा दूजे नाल वंडदे आ शेयर करदे आ उन्नी चीज़ जिहड़ी है वह वधदी है इनफॉरमेशन यानी कि जानकारी ते जानकारी जेकर गल करिए तां आंदा इक शब्द ज्ञान ते मैगा जी जिन्नी ज़्यादा जानकारी होंदी है सही जानकारी उन्ना ही ज्ञान विच वाधा हुंदा है ते वाधा ज्ञान विच तां ही हुंदा है जदों असीं दूसरियां दे नाल इनफॉर्मेशन सांझी करदे हां ते प्रोग्राम इनफो टाइम्स भी तुहाडे वास्ते बहुत सारी इनफॉर्मेशन दा डोज जिहड़ा है लैके आया तां कि साडे जिहड़े फ्रेंड्स ने साडे जिहड़े स्रोते ने उह किसे भी जानकारी तों मिस उहनां तों ना हो जाए ते मैगा जी प्रोग्राम दे विच बहुत सारी जानकारी वास्ते ट्यून इन छेती छेती कर लो ते अपने दोस्तां नूं भी कह दो ते इस दे नाल ही प्रोग्राम दे विच पहला गीत पेश करन जा रही है जी आवाज़ है सतिंदर सरताज दी ते इस तों बाद मैगा जी तैयार हो जाओ जेकर कॉपी पेन नाल रखना है चेता भुल जाना ते फिर रख सकते हो पर मिलदे हां इस गीत दे उस पार तद तक इंजॉय करो ये गीत

दो दी बजाय चार ले लो, पर जेकर शरीर सही नहीं है, जेकर तुहाडी बॉडी जवाब देना बंद कर गई है, मतलब किसी भी तरह की तुहाडे च वीकनेस है या प्रॉब्लम है, तो फिर तुसी उस जगह का मजा नहीं ले सकते। गल सिर्फ इतनी है कि सब तो जरूरी है सेहत। बंदे की सेहत जेकर सही है तो मैं क्या जी फिर मजे ही मजे है, इत्थे ही स्वर्ग है, इत्थे ही जन्नत है। तो प्रोग्राम इनफो टाइम्स के विच सब तो पहला जेकर असीं गल करिए गट हैल्थ की, रिपोर्ट्स के मुताबिक गट हैल्थ जिहड़ी है बहुत ज़्यादा जरूरी है। जेकर साडी गट हैल्थ सही है तो साडी साइकोलॉजिकल हैल्थ जिहड़ी है वह भी सही रहती है, मतलब साडा जिहड़ा माइंड है वह भी बिल्कुल 100% जिहड़ा है काम करता है जेकर गट हैल्थ सही है। तो हुण गल इत्थे आउंदी कि गट हैल्थ आखिर है कि, तो दोस्तों गट हैल्थ जिहड़ी है इसका सीधा अर्थ साडी पाचन प्रणाली यानी कि डायजेस्टिव सिस्टम दे नाल है। जेकर पेट ते पेट दे अंदर जिहड़ियां अंतड़ियां ने मतलब इंटेस्टाइन्स है अते इस विच कोलन शामिल हुंदे ने ते इह जिहड़ी साडी भोजन प्रणाली है उस नूं खाना पचाउण दे विच जिहड़ा है उस दे विच स्पीड जिहड़ी है वह प्रोसैस स्लो हो जाती है, ते इस दे नाल ही इह जिहड़ी गट हैल्थ है इस दे विच जिहड़ा कोलन है इह शरीर नूं ऊर्जा देण दा भी मुख काम करदा है। तो गट हैल्थ हुण जरूरी क्यों है, सवाल तो यह भी आंदा है गट हैल्थ क्यों ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों इस करके क्योंकि एक तंदुरुस्त गट जिहड़ा है इस विच चंगे बैक्टीरिया हुंदे ने जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जिहड़ी है इम्यूनिटी जिहड़ी है उसनू वधांदे ने ते बीमारियां नाल लड़न विच मदद करदे ने, मतलब तुसीं इदां समझ सकदे कि बहुत सारे जिहड़े ना वायरस बैक्टीरिया वर्गे बहुत सारे एनिमीज ने, ठीक है जी, दुश्मन ने जिन्हां तों जिहड़ी है सेफ्टी करदी है साडी गट हैल्थ। साडी इम्यूनिटी अगर अच्छी है, गट्स साडे अंदर गट हैल्थ अच्छी है तो डेफिनेटली जिहड़े एनिमीज ने वायरस बैक्टीरिया सानूं छू भी नहीं सकते। हुण गट हैल्थ सही है या फिर नहीं ये पता किदां चलदा, तो जेकर किसी इंसान दे विच बार बार किसी नूं एसिडिटी की प्रॉब्लम होंदी है, ठीक है जी, गैस की समस्या होंदी है, कब्ज़ रहिंदी है या फिर ब्लोटिंग रहिंदी है, चिड़चिड़ापन रहिंदा है, थकावट महसूस करदे हो, तो ये सिमटम्स ने कि तुहाडी गट हैल्थ दे विच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो तुहानूं ध्यान देण दी जरूरत है। मैं क्या जी बहुत सारिया स्टडीज़ हुई जिस विच ये कहा गया है ये चीज़ प्रूफ हुई है कि जेकर गट हैल्थ खराब होंगी है तो सानू बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होने लग पैंदे, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैस, एनजाइटी, डिप्रैशन वर्गिया चीज़ा भी अक्सर रहिंदियां वा। तो इसनू अगर आप चाहते दिमाग साडा हैल्दी रहे तो जरूरी है सब तो पहला काम किया जाए डायजेस्टिव सिस्टम से अपनी गट हैल्थ से। हुण 3 F दसांगे मैं तुहानू, ये अजिहे रूल्स इन्हां कह सकते अजिहे प्रोटोकॉल्स कह सकते हो अपनी हैल्दी बॉडी वास्ते जिसनों अपना के तुसी बिल्कुल फिट एंड फाइन रह सकते हो, तो गट हैल्थ तुहाडी मैं कहां जी एकदम अच्छी हो जाएगी। तो सब तो पहला जेकर गल करिए असी तो अपनी डाइट, फाइबरस डाइट जिहड़ी तुसी जो भी खाना खाते हो उस विच फाइबरस ऐड ऑन करो, कारण फाइबरस उस सिर्फ पाचन खाना पचाउण दा काम नहीं करदे, बहुत सारिया शरीर दे विच अजिहियां प्रॉब्लम्स हुंदियां वा जिस तो भी बचाउंदे है। शरीर में फाइबर जेकर शरीर विच होण तां पेट दे अंदर जिन्ने भी गुड बैक्टीरिया ने उहनां नूं इनक्रीज करदे है, तो इस दे नाल ही नाल जिहड़ियां साडियां इंटेस्टाइन्स है उहनां दी क्लीनिंग करदे है। इंटेस्टाइन अगर असीं गल करिए तां आम भाषा दे विच एक तरह की एक नाली हुंदी है, जेकर वह साफ है, जेकर उहदे विच कुछ नहीं है, एकदम साफ है, वह रस्ता नाली बिल्कुल साफ है, तुसीं कुछ भी खा रहे हो वह इंटेस्टाइन विचों होके जा रहा है, अच्छी तरह डायजेस्ट हो रहा है। पर जदों असीं बहुत सारा जंक फूड खा लें, ऑयली फूड खा लें, बैठे रहने एक जगह पर, तो जिहड़ी नाली है यानी कि इंटेस्टाइन जिहड़ी पाइप है वह भर जाती है, जिहदे करके एसिडिटी वर्गी प्रॉब्लम, ब्लोटिंग वर्गी प्रॉब्लम का सानू सामना करना पैंदा है। तो सिंपल इहदा सोल्यूशन यही है फाइबरस खाना खाओ क्योंकि ईजी टू डाइजेस्ट हुंदे है, तो साडे इहदे नाल जिहड़ा कोलेस्ट्रॉल उस दे विच वी उसनू वी घट रखदा है, तो जिहदे करके साडा जिहड़ा हर्ट है, दिल है, वह भी सही रहिंदा है, तंदुरुस्त रहिंदा है। तो इस तों बाद दूसरी जिहड़ी चीज़ है

हाँ जी, मैं कह जी प्रोग्राम इनफो टाइम्स हुन उस मौके दे पहुंच गया जिते तुहाडे तो इजाजत लैण दा समा आ गया। पर मैं कह जी इजाजत इद्दां किदां लै सकदी हो, जांदे जांदे तुहानूं कुछ दसन जा रही हां कुछ खास प्लेसिस बारे जिथे तुसीं इस समर दे विच अपने परिवार दे नाल जा सकदे हो। क्योंकि जी जून दा महीना है, जून महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो आखिरी दिन यानी कि छुट्टियां दे उस दिन जो तो परिवार के नाल मैमरीज बनाने का समय है। तो दोस्तों इन्हां छुट्टियां दे विच तुसीं भीड़ भड़के तो दूर हिमाचल दियां वादियां दे विच आनंद माण सकते हो ब्रोट वैली का। तो ब्रोट वैली की जेकर गल करिए तो समुद्र तल तो 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह वैली बहुत ही सोहनी है। तो कुदरत प्रेमियों वास्ते, वातावरण प्रेमियों वास्ते बेस्ट जगह है। तो इत्थे वगदी जेकर गल करिए ओहल नदी की, तो चारे पासे फैले देवदार दे जंगल जिथे तुहानू कुछ पल शांति दे देणगे, उत्थे ही तुहाडी जिहड़ी मन की थकावट उसनू भी जिहड़ा है दूर करनगे। तो ओहल नदी की गल कर ली, उस तो बाद गल करिए तो एडवेंचर पसंद लोगों लिए इत्थे ट्राउन मच्छी फड़न वास्ते भी जिहड़ा एक खेतर है। इस दे नाल ही नाल जेकर गल करिए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिथे जाया जा

नमस्कार, एफएमएन 102.7 मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी जलंधर का रेनबो चैनल है। रात के 9 बज गए ने ते पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस। पंजाब विच कल 25 जून तो वोटर सूचियां दी महीना पर चलन वाली विशेष तीबर सोध एसआईआर होवेगी शुरू। केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज जलंधर विच क्रॉसिंग गुरु नानकपुरा अते बस स्टैंड तो गड़ा रोड मुख रेलवे फाटकां ते बनाए जान वाले ओवरब्रिजां दा नींह पत्थर रख्या। इन्हां उत्ते करीब 113 करोड़ रुपए दी लागत आवेगी। केंद्र सरकार ने पुष्टि कीती सौनी सीजन 2026 लई पंजाब विच यूरिया अते डीएपी खाद दी लोड़ींदी मात्रा उपलब्ध है। पंजाब ऑब्जरवेशन होम्स अते स्पेशल होम्स विच रह रहे बच्चियां लई हुनर विकास प्रोग्राम दी शुरुआत करन वाला देश दा पहला सूबा बनिया। पंजाब सरकार वल्लों मोहाली विखे एनआरआई मिलनी 2026 दा आयोजन। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरां ते वार मुहिम तहत जनवरी तो हुण तक गैंगस्टर विरोधी कारज बल ने सूबे भर विचों गोला बारूद समेत 713 गैर कानूनी हथियार बरामद किते। होमी भाभा कैंसर हस्पताल अते खोज केंद्र ने संगरूर इकाई विच अपग्रेड कीती टैलीथैरेपी मशीन नाल अपनियां रेडियोथैरेपी सहूलतां नूं अपडेट कीता। पंजाब गऊ सेवा कमिशन दे उप चेयरमैन कीमती भगत वल्लों रूपनगर विखे वख वख अधिकारियां नाल मीटिंग कीती गई। अते मौसम विभाग ने अज तो लैके 26 जून तक पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ विच कुछ थावां उते गरज चमक दे नाल हल्की तो दरमियानी वर्खा बारे येलो अलर्ट जारी किया। तुसी सुन रहे सी एफएम न्यूज हेडलाइंस। हुन तो कुछ चिरां दे इंतजार तो बाद पेश करांगे प्रोग्राम दिल चाहता है।

नमस्कार आभार जी आयानू एफ एम एंड 102.7 मेगा हर्ट्स ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल ट्यून इन कीता होया तुसी ते मैं कहिंदी जी चेहरे ते मिठी जी मुस्कान दिल विच जोश प्यार ते दोवें हाथ जोड़ हाजिर हां तुहाडी दोस्त आरजे नेहा रलहन एक बार फिर लैके प्रोग्राम दिल चाहता है।

एक बहुत ही ऊर्जा नाल भरिया गीत सुनिया तुसीं किशोर कुमार दी आवाज़ दे विच पग घुंगरू बांध मीरा नाची थी। तो मैं कहा जी इस गीत दा तुसीं आनंद तां मानिया ही, इस दे नाल ही नाल इस गीत दे विच बहुत सारियां चीज़ां भी सी। चीज़ां बहुत सारियां जिंदगी दे कुछ फलसफे भी जुड़े सी कि जिथे असीं हैगे हाँ उत्थे रहना चाहिदा है, तो उत्थे उस जिस दा असीं खाने हाँ, मतलब लॉयल्टी की गल की गई इत्थे, इत्थे पैशन की गल की गई है, इत्थे समर्पण की गल की गई है। बहुत सारिया चीज़ा इस गीत दे विच सुनिया। तो हुण प्रोग्राम दा अगे असीं प्रोग्राम वल वधदे हाँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस साडा इंतजार कर रहे हैं कि कदों साडी वारी आएगी। तो लो जी फिर ग्रीन स्क्रीन साडी

जिसे ये सुनकर हर एक श्रोता आनंदमय हो जाता है। पूरी टीम को बधाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी इस प्यार परे मैसेज वास्ते। वड़िंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा भी शामिल हो चुके ने। ते रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी का मैसेज आया है। तो इन्हों के नाल ही नाल पिंड नथाणा पंजाब तो हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता ते गीता मैसेज कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिलों प्यार तुहानू सब नू। ते एक होर मैसेज आया जी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार तो मैसेज आया है। ते बाकी दे मैसेजेस भी एक एक करके शामिल करांगे, पर पहला सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ के विच फरमाया एक गीत।

गुड इवनिंग लिखे भेज रही है जी सोनू रवि राज गुलशन लखी बलदेव नगर जलंधर तो मैसेज कर रहे ने ते लिखते ने कृष्णा कॉटेज फिल्म का गीत सुना दिता जाए ते बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगली नमस्कार साढ़े तक पहुंची है मजनू का टेला तो कमल बालूजा मधु बालूजा सागर ते सतना मध्य प्रदेश तो उमंग मलिक आकांक्षा मलिक ते माही मलिक। दोस्तों फरमाइश इन्हों की आई है कहते फिल्म निगाहें का जड़ा है गीत सुना दिता।

स्वागत कर दी हाँ सारे ही श्रोतियों का, इन्ना प्यार देने वास्ते, इन्ना माण देने वास्ते। गोविंदपुरा सिकर राजस्थान तो दातार सिंह शेखावत, संगीता कवर तुषार सिंह, रिंकी शेखावत द मैसेज आया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस नाल ही बहुत सारे रुखां वाली इमोजी साढ़े तक पहुँचाई है। पिंड कमंडिया सूरतगढ़ तो जगदीश टुकिया, प्रमीला, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमन, तमन्ना, साइना, विष्णु टुकिया, दोहती उन्हां दी ईवा, बहुत बहुत शुक्रिया जी इन्हां सारे ही दोस्तों का। ते फरमाइश है जी इन्हां दी फिल्म 10 नंबरी तो गीत प्रेम का रोग बड़ा बुरा। मैं कह जी सियाने कहिंदे आ जिहड़ियां दवाइयां होंदियां ना वह कौड़ियां ही होंदियां है, ते कौड़ी दवाई ही सेहत नूं सही करदी है जदों कदे तबीयत खराब हो जाती है, ते प्रेम भी कुछ अजिहा ही है। इस नाल ही अनारकली बाजार जगराओं पंजाब तो सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका गाविया, भाई सुचा सिंह ते विनोदपुरी का मैसेज आया है जी, ते इन्होंने भेजी है फिल्म की फरमाइश। शोर फिल्म का कहिंदे ने गीत सुना दिता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी इस मैसेज वास्ते। एक होर शामिल कर लैने गीत फरमाइश रिंगनी छत्तीसगढ़ तो दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा दी, ते इन्होंने फरमाइश भेजी है जी, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। ते लो जी फिर इन्हां सारे ही दोस्तों की रली मिली पसंद ते असी सुनते हाँ, तुहानू भी सुनाने हैं। शोर फिल्म का गीत आवाज़ महेंद्र कपूर कि जीवन जड़ा है चलन का नाम है, ते इस जीवन दे विच शुकराना करदे हुए चलदे ही रहना है।

माली सरवद सानवी ते हर्षता। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस नाल ही प्रताप जनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया किसी भी गीत की इन्होंने फरमाइश भेजी है, तो मैसेज इन्होंने किया है सिरसा हरियाणा तो। एक होर मैसेज आया है, लिखते ने कि फिल्म का गीत सुना दिता जाए, चलती का नाम गाड़ी, तो गीत की फरमाइश भेजी है साढ़े तक। इन्हें जी सरोते रजक मोहम्मद, सनीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी इन्होंने सारे ही दोस्तों का। तो इस दे नाल ही नाल एक होर मैसेज जड़ा है वह साढ़े तक पहुँचा है जी। चूड़िया बाजार तो मैसेज भेज रहे ने शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदर लाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार ते कुमारी पूजा। सत श्री अकाल लिख के भेजी है बलविंदर सरां, गुणतास, रमनदीप, मनिंदर सरां, पिंड मोरजंड, सिखा हनुमानगढ़ तो मैसेज कर रहे ने, ते बहुत बहुत शुक्रिया। ते लो जी फिर एक होर मैसेज साढ़े तक भेज रहे ने दिग्दर्शन कविता गोड़ मैरिट कैंट तो, ते इन्हां दे नाल ही गुलाब दे फुल्लां दे नाल ते हाथ जोड़ के प्रोग्राम दे विच शिरकत कीती है विक्रम कडवासरा, सचिन, सतीश, योगेश ते युदव कडवासरा ने। ते मैं कहा जी इन्हां दी फरमाइश पूरी हो चुकी है ते इन्हां ने शुक्रिया किया है, ठीक है जी। ते एक होर मैसेज साढ़े तक पहुँचया है MLB रोड ग्वालियर तो, सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव ते SK जी दा। ते इन्हां ने बहुत ही सोहना एक पोस्टर जिहा बना के भेजे अपनी फरमाइश का। तो इन्हां दी फरमाइश है जी रानी रूपमती दा, कहिंदे गीत सुना दिता जाए, आ लौट के आ जा मेरे गीत बुलाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन्हां सारे ही दोस्तों का। तो रानी रूपमती फिल्म का गीत की फरमाइश की है आवाज़ है जी मुकेश की। गीत सुनने तो पहले एक होर मैसेज शामिल कर रहे हैं आदर्श नगर मलोट तो जो साढ़े तक पहुँचे हैं, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरभ, साइना ते निवान, बहुत शुक्रिया। ते मुकेश जी की आवाज़ के प्रोग्राम का अगला गीत तो साहब वास्ते

किसी को अलविदा कहने की साथ किस कदर तकलीफ देती है, बहुत रंजूर करती है कि जैसे चौदहवीं का चांद बादल ओढ़ ले यकदम, कि जैसे सर्दियों की दोपहर में शाम हो जाए। दोस्तों, प्रोग्राम दिल चाहता है सुन रहे हो अपने दोस्त आरजे नेहा रलहंदना। ते प्रोग्राम दे विच हुण कुछ आखिरी फरमाइशां जो साढ़े तक पहुंचियां हैं, जाते जाते उन्होंने भी नाम प्रोग्राम दे विच जरूर शामिल करना चाहूँगी। तो गुड ईवनिंग लिख के भेजी है जी, तमाम उम्र कर लेंगे तेरा इंतज़ार, मगर ये रंज रहेगा कि जिंदगी बहुत कम है। तो मैसेज भेजे जी सतपाल वर्मा गिदड़बाहा पंजाब तो। मैं कह जी रंज तो हर रोज़ ही करते हैं असी, हर कड़ी ही करते हैं, पर उस रब दी उस कुदरत दे विच विश्वास करके, जे रंज जे शिकवियां नूं परां करके जिस पल दे विच जीए, तो मैं कह जी दुनिया दी होर इस तों वड्डी कोई दौलत नहीं होएगी। इस नाल ही नाल एक होर मैसेज दिल तो धन्नवाद कर रहे ने सुरेंद्र कुमार सोपती, नीतू सोपती, साहिल सोपती, नेहा, रितिक, राहुल, मेगा, तो पूरा सोपती परिवार शाहकोट जिला जलंधर तो मैसेज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहाडा तहे दिलों। तो इस नाल ही नाल प्यार भरी सत श्रीकाल पिंड वड़िंग खेड़ा जिला श्री मुकतसर साहिब तो पोला सिंह सिद्धू, लाडी धालीवाल जलंधर तो मास्टर मोहन लाल शौंकी अते अरविंद कुमार ने भेजी है। तो होली चौंक उत्तम नगर तो जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु, कमलेश मैसेज कर रहे हैं। तो एक होर मैसेज प्रोग्राम का आखिरी मैसेज जो शामिल कर जा रही हूँ वो है जी साढ़े तक पहुँचाया जोन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलीज डिकैस्ट्रो। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत चावं के नाल तुहाडे मैसेजेस साढ़े तक पहुँचते हैं जो कि दसते हैं तुहाडा साढ़े प्रति प्यार, आकाशवाणी प्रति प्यार, FM रेनबो दे प्रति प्यार। ते प्यार इस तरह ही बरकरार रहना चाहिए। जाते जाते तुहाडे तो इजाजत तो लैनी है प्रोग्राम इत्थे ही वाइंड अप करन दी, क्योंकि तुहानू मिलांगी 10 बजे लैके शामी गजल। ते जाते जाते मैं कह जी जेकर आगाज़ गीत नाल होया सी ते विदा भी ते फिर गीत दे नाल ही होनी चाहिए। ते लो जी फिर शमशाद बेगम की आवाज़ दे विच प्यारा जिहा गीत तुहाडे वास्ते पेश करन जा रही हूँ।

नमस्कार, आदाब। एफएमएंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल ट्यूनिंग किता होया है ते बने हुए अपने दोस्त आरजे निहारल हंदे नाल। अपने इस दोस्त वालों प्यार भरी नमस्कार आदाब कबूल फरमाओ।

दोस्तों शामी गज़ल प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। यह प्रोग्राम है जिस विच असी गज़ल सुनते हाँ ते नाल ही नाल गज़ल दे राही कुछ देर जिंदगी दी जिहड़ी रफ्तार है उसनू कट करन दी कोशिश करते हाँ। पर इस रफ्तार नू कट करना क्यों है? क्योंकि जद रफ्तार कटती है तां ही असल विच असी इस समय नू महसूस कर पाते हाँ। जो चीज़ां साढ़े आस पास हो रही हैं उन्हां नू समझ पाते हाँ। इस दे नाल ही जज्बात तलसुफ तसव्वुर इन्हां सारियां चीज़ां का जिक्र हुंदा है जद कुछ पल खुद दे नाल बैठते हाँ। इस ते ही क्या खूब मिर्जा दाऊद लिखते ने, उन्हां दी लिखत पढ़न तो पहला गल करिए मिलन दी। जिंदगी दे विच सब तो खूबसूरत है जद किसे नूं मिलदे हाँ, किसी नवी थान मिलते हैं, किसी नवे शख्स को मिलते हैं। जब मिलना होंदा है तो वो एहसास बड़ा असहज महसूस होंदा है, अनकंफर्टेबल होंगे हाँ। पर हौली हौली जिदा जिदा उस थान उस जगह उस इस शख्स के नाल दोस्ती होंगी है तो हर एक चीज़ आसान लगन लग पैंदी है, वो मिलन खूबसूरत हो जाता है। तो उस तो बाद जब समझ आ जाती है एक दूसरे की तो फिर मन बार बार चाहता है मिलना। इसते ही मिर्जा साहब लिखते ने, जो वादा मोहब्बत का तेरी नोश किया है, जो वादा मोहब्बत का तेरी नोश किया है, एक बार वो आलम क्यों फरामोश किया है। आई

ताकि ये बदमस्त मैं इश्क ने तेरी ले होश मुझे होश सुन बेहोश किया है। प्रोग्राम दी पहली गजल ते गजलकार ने मेहंदी हसन।

जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और।

उसको जाते हुए रोका नहीं, इस बात का मलाल तो रहा मगर रोकता कैसे। उसके उसको जाते हुए देख मन में रहा तो सिर्फ मलाल, रोकना चाहा मगर रोका नहीं गया, क्योंकि मन में बिखरने का डर था कि बिखर जाएंगे तो समेटेगा कौन। इस पर परवीन शाकिर क्या खूब लिखती हैं, अक्स एक खुशबू हूँ बिखरने से ना रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको ना समेटे कोई। कांप उठती हूं मैं ये सोच के तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम ना पढ़ ले कोई, मेरे चेहरे पे तेरा नाम ना पढ़ ले कोई।

रफ्तार रफ्तार सब कुछ अच्छा हो जाएगा, रफ्तार रफ्तार सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा।

0: मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 28 जून 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालो नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नैशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री होरां दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स FM 102.7 मेगाहर्ट्स DTH दी AIR पंजाब सेवा DRM 864 किलोहर्ट्स FM 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती FM 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर FM 100.9 मेगाहर्ट्स FM 100.8 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 135वीं कड़ी
1: आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता जब जुल्फ की कालक में गुल जाए कोई राही बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता।

मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले, जिस काफिर पे दम निकले।

हजारों काम मोहब्बत में है, हजारों काम मोहब्बत में है मज़े के दाग। जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, वो कमाल करते हैं।

0: जग बदला, जब से हमने दिल बदले हैं सारा जग बदला।
1: कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। वो ना आए तो सताती है खलीश सी दिल को, वो जो आए तो खलीश और जवां होती है।

0: के मिले, दे दिया तू ले ले दिल, यूं नहीं तो छुप के मिले। तू हमारा हो जाया अपना, हमें बना अब न जी दुखा, अब न जी दुखा, किसी की जान से न खेल रे अनाड़ी। दे दिया तू ले ले दिल, यूं नहीं तो छुप के मिल, अनाड़ी अनाड़ी अनाड़ी रे।
1: दे दे दे दे तो ले ले ले दिल, यूं नहीं तो छुप के मिल,

0: वो मेरे दिल के, वो मेरे दिल के तलबगार नजर आते हैं, शदमानी के बासार नजर आते हैं, जो मेरे नाम से बेजार नजर आते थे, अब वही दिल के तलबगार नजर आते हैं।
1: आई आई आई आई आई आई।

दोस्तों बहुत जल्द रात 11 बजने वाले ने ते प्रोग्राम सुन रहे हो तो सी एक प्यार का नगमा है। गल हुई है थे प्यार दी, गल हुई है नगमे दी। ते फिर इस अज दी महफिल दे विच बहुत सारे गीत सुने, गीतां दे राही इस खुशनुमा वक्त दा शुकराना ते कीता, उस दे नाल ही नाल इसनू जिया भी। तो उम्मीद करती हूँ अज का प्रोग्राम तुहानू बहुत पसंद आया होगा। तो जाते जाते साहिर होशियारपुरी साहब की एक लिखत है, लिखते ने, टालने से वक्त क्या टलता रहा, टालने से वक्त क्या टलता रहा, आस्ती पे सांप एक पलता रहा, मौत भी लेती रही अपना खिरास, कारोबार जिस्त भी चलता रहा। कहना भाव सिर्फ इन्ना ही है, जिंदगी दे विच बहुत सारिया चीज़ा हैं जो कि चलदिया ही रहनिया है, साढ़े नाल भी ते साढ़े बाद भी। ते जरूरी है इस पल दे विच रहिए, जिन्ना हो सके इस मूमेंट नू इंजॉय करिए, शुकराना करिए, ते लंबा जिहा साह भर के खुद नू विश्वास दिलाइए कि हर एक चीज़ जिहड़ी है, हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम अपने आप सोल्व हो जाएगी। हर एक चीज़ दा वसीला है। ते इस दे नाल ही प्रोग्राम दा आखिरी गीत जिहड़ा है लता मंगेशकर की आवाज़ दे विच पेश करन जा रही हाँ। तो गीत दे बोल सुनन तो पहला बस यही कहना चाहूँगी, कल सवेरे जो नवी शुरुआत करो, सूरज नू देखो, तो बस बन ठन के जिंदगी का हाथ होर जोर दी फड़ लेना है, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इस विश्वास है ना कि जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी खुशनुमा है। मैं तुहाड़ी दोस्त नेहा रलन इतों इतें ही इजाजत तुहाड़े तो लैनी हाँ। तो प्यारा जिहा गीत तुहाडे सब वास्ते उम्मीद है तुसी कबूल फरमाओगे।

दोस्तों रात दे 11 बज रहे ने, साडी अज दी सभा दे सारे ही प्रोग्राम इत्थे समाप्त हुंदे ने। हुण तुहानू मिलांगे कल जद कड़ी दियां सुईयां इशारा करनगियां सवेर दे 5:53 दा। तद तक अपना ते अपणियां दा रखो ध्यान। शबा खैर, जय हिंद।